FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की DNA प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर DNA प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। DNA प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त DNA प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व

0: जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।

मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। इस जीवन का केवल एक ही उद्देश्य और लक्ष्य होता है, भगवान की अनन्य भक्ति करना। भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सुखों और दुखों से मुक्त होकर कभी ना समाप्त होने वाले आनंद को प्राप्त हो जाता है, और यह आनंद सत्संग के बिना नहीं मिलता। संतों की संगति ही परम सिद्धि का फल है और आनंद और कल्याण का मुख्य मार्ग भी। इसलिए निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति में स्वयं को समर्पित कीजिए। अपने जीवन में आनंद, संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भजन की मधुर धुन जब कानों में उतरती है तो मन हर बेचैनी पल में संवरती है। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहिए और भक्ति की इस महिमा में अपना सर्वस्व लुटाते रहिए।

जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से भक्ति संगीत की मधुर अनुभूति आरंभ होती है, जो सीधे हृदय से निकलकर प्रभु के चरणों तक पहुँचती है। आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इस संगीतमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस भक्तिमय रचना के साथ।

जब मन प्रभु नाम में रम जाता है तो हर स्वर प्रार्थना बन जाता है और हर धुन आराधना। तो आइए अपने मन की सभी चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और भक्ति संगीत की मधुर सरिता में डूबकर आत्मिक शांति का अनुभव करें।

इसी भक्ति में रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का भाग 199।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज तीनों सभाओं में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा। 7:55 पर आप सुनेंगे देशगान। 8:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम जनवाणी। आज का ये कार्यक्रम रहेगा सजीव फोन इन। प्रातः 10:00 कार्यक्रम गीतों का कारवां पेश किया जाएगा। 10:30 पर हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर प्रस्तुत किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे। 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर सखियों के लिए कार्यक्रम रहेगा सुनो सखी। 1:10 से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 5:10 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी भजन। 5:30 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम रहेगा युवा मंच। 5:55 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर कार्यक्रम रहेगा मौजां ग्राइंदियां। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 8:00 कार्यक्रम रहेगा सबरच जो विविध संगीत पर आधारित रहेगा। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। 9:15 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा एक ही फिल्म से। आज की फिल्म रहेगी 1976 में बनी चरस। 9:30 पर कार्यक्रम कारवां सुरों का सुनवाया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत। कार्यक्रम रहेगा बॉलीवुड बीट्स। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा प्रातः 9:20। 11:00 दिन में 3:00 6:00 और 7:45 आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। दिन में 1:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। साथ ही 5:00 7:00 11:00 हिंदी में ही समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा दिन में 1:05 7:05 11:05। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: हेलो सर, मैं स्टूडियो 5 से बोल
1: कृतवन्तौ उभौ देशौ आगामिषु पञ्चषु वर्षेषु द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकांक्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आतिथ्यं

0: करिष्यति। अस्मिन् मंचे ब्रिक्स सदस्य देशानां सहभागी देशानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानां अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिक नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मंचः सहभागी न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्याय वितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे विभिन्नानां न्यायिक प्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपाल देशस्य जलाप्लाव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धार कार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धार सामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धार सामग्र्यः नेपालस्य विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष मन्त्रिणे महावीर पुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंगवर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है, उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानांतरीकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anucha Kumar. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. This is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartuhari Mehtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th of August gave nod for referring the bill to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent 2 more aircraft with relief material to Nepal to support the ongoing relief and rescue efforts in the flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation, Mahabir Purn. The Ministry of Home Affairs will make available services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University for DNA profiling of first-degree biological

सुबह सुहानी। सुबह सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो श्रोताओं, हो चुकी है शुरुआत आज के इस दिन की, इस सुहानी सी सुबह के साथ। उजली सी इस सुबह में पक्षियों के कलरव, ठंडी हवाओं के रुख और उगते सूरज की किरणें एक मीठा सा एहसास हमें करवाती हैं। और खुशनुमा से इस मौसम का मजा और दुगना कर देता है रेडियो का ये साथ, जिसमें गीत हैं, बांधे हैं, जानकारियां और मनोरंजन की सौगातें हैं। तो चलिए सुहाने से इस सुबह की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ, जो यकीनन सभी श्रोताओं को तरोताजा कर देगा। श्रोताओं, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता की सुबह उतनी ही चमकदार होती है। तो उठिए, मुस्कुराइए और आज के दिन को कल से बेहतर बनाइए, और आपकी सुबह को बेहतर से बेहतरीन बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाइए और आज के दिन को गले से लगाइए, ठीक इस प्यारे से गीत की तरह।

आप जुड़े हैं इस समय आकाशवाणी धर्मशाला के संग। कार्यक्रम है सुबह सुहाने, जिसमें जानकारी और गीत संगीत के, जी हाँ, हम भरते हैं रंग, बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे, जान लेते हैं आज के दिन की कहानी। क्या कुछ कहता है आज का ये दिन, या यूं कहें कौन सी बातें, कौन सी घटनाएं बनाती हैं आज के दिन को और भी खास, और क्या महत्व रखता है इतिहास में आज का ये दिन।

श्रोताओं, 1965 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच ऐतिहासिक पुरंदर की संधि पर आज ही के दिन हस्ताक्षर हुए। 1781 में आज ही के दिन स्पेन के निवासियों द्वारा अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर की स्थापना की गई। 1888 में महान आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक कैमरे का पेटेंट कराया और कोडक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया आज ही के दिन यानी 4 सितंबर को। बात करें 1946 की तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया आज ही के दिन। समुद्र की गहराइयों में समा चुके प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक की पहली तस्वीरें जो 73 साल के बाद सामने आई आज ही के दिन 1985 में। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई यानी आज ही के दिन, जिसमें आज हम बहुत आसानी से सब जानकारियां ढूंढ लेते हैं और इसमें भाषा की भी कोई बाधा नहीं है। फिर चाहे हम हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, ये सब हमें जानकारी गूगल से ही मिलती है।

श्रोताओ, आप जान लेते हैं उन महान हस्तियों के नाम जिनके जन्म हुए आज ही के दिन। आज ही के दिन प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरजी का जन्म 1825 में आज ही के दिन हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, लेखक, समाज शास्त्री भूपेंद्र नाथ दत्त का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ। किरण मोरे, भारतीय क्रिकेटर का जन्म आज ही के दिन हुआ। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सिया राम शरण गुप्त का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। 1952 में भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ऋषि कपूर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ।

जी हाँ, 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्मे अभिनेता ऋषि कपूर एक फिल्म मेकर और एक बेहतरीन अभिनेता थे। उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो आइए ऋषि कपूर पर ही फिल्माया सरगम फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

सरगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी आकाशवाणी धर्मशाला से। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर सीमा। ऋषि कपूर की आज हम बात कर रहे हैं तो 1973 से लेकर सन 2000 तक लगभग 92 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और फिल्म बॉबी के लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और इसी फिल्म ने उन्हें युवा पीढ़ी का लोकप्रिय अभिनेता भी स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने

0: कर्ज, चांदनी, सागर, प्रेम रोग, नीला गगन, अमर अकबर, एंथनी, अग्निपथ कई हिट फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिल पर छोड़ी। और 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया से वो अलविदा कह गए, लेकिन उनकी मुस्कान, अभिनय शैली और खुशनुमा मिजाज के लिए वो आज भी याद किए जाते हैं। सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब जान लेते हैं उन हस्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, कवि, नाटककार धर्मवीर भारती का निधन आज ही के दिन हुआ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसूजा का निधन 4 सितंबर 2015 को हुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक जग मंदड़ा का निधन 4 सितंबर को ही हुआ। जी हां श्रोताओं, व्यक्तित्व चले जाते हैं लेकिन उनके कार्य, उनके विचार हमेशा हमारी स्मृतियों में रह जाते हैं। और अब जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण दिन के बारे में। जी हां, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं हम आज, और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये पावन दिन मनाया जाता है। और भक्ति, प्रेम और उल्लास से सरोबार है आज चारों तरफ का वातावरण। जी हां, मंदिरों की घंटियों में श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि है, और जहां प्रेम है कहते हैं वहां कृष्ण है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां सच्चा कर्म है वहां कृष्ण है। तो जहां कृष्ण है वहां ही उत्सव है, और श्रोताओं को भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा की मधुर बांसुरी की धुने आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियों के रंग भर दें।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

जी श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं दादा भाई नौरजी की जयंती, जो आज ही मनाई जा रही है। जी हाँ, 4 सितंबर 1825 को उनका जन्म गुजरात में हुआ। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के अनधिकृत राजदूत के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने 1866, 1893 तथा 1800 में ही उन्होंने 1893 में 3 बार और साथ ही साथ 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे।

अब बात जी हाँ पौष्टिक आहार की, तो हम सभी ने पौष्टिक आहार लेना है और अपना ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अब आप सभी के मनोरंजन का भी हमने ध्यान रखना है। ये रहा एक और गीत।

जी श्रोताओं, अब आज के समाचारों की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश में शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय से जुड़े प्रशासनिक बदलावों और महत्वपूर्ण घोषणाओं पर चर्चा जारी है। और साथ ही खेल समाचारों की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को 137 रनों से हराकर महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है। और बात करें मौसम की तो मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है और हल्की गुनगुनी सी धूप जो है वो खिल रही होगी। और इसी के साथ अब कार्यक्रम सुबह सुहानी का समय हो रहा है संपन्न। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 24वां अध्याय, देश की ओर। मुझे आशा थी कि इस तरह शुरू किए गए अभ्यास को मैं देश में पहुंचने के बाद भी जारी रख सकूंगा, पर वैसा ना हो पाया। सन 1893 के बाद का मेरा वाचन और अध्ययन मुख्यतः जेल में ही हुआ। इन दोनों भाषाओं का ज्ञान मैंने आगे बढ़ाया तो सही, पर वह सब जेल में ही था। तमिल का दक्षिण अफ्रीका की जेल में और उर्दू का यरवड़ा जेल में। पर तमिल बोलना मैं कभी सीख ना सका। पढ़ना ठीक तरह से सीखा था, पर अभ्यास के अभाव में अब उसे भी भूलता जा रहा हूँ। उस अभाव का दुख मुझे आज भी व्यथित करता है। दक्षिण अफ्रीका के मद्रासी भाइयों से मैंने भर भर कर प्रेम रस पाया है। उनका स्मरण मुझे प्रतिक्षण बना रहता है। उनकी श्रद्धा, उनका उद्योग, उनमें से बहुतों का निस्वार्थ त्याग किसी भी तमिल तेलुगु को देखने पर मुझे याद आए बिना रहता ही नहीं। और ये सब लगभग निरक्षरों की गिनती में थे। जैसे पुरुष थे वैसी ही स्त्रियां थीं। दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई ही निरक्षरों की थी और उसके योद्धा भी निरक्षर थे। वह गरीबों की लड़ाई थी और गरीब ही उसमें जूझे थे। इन भोले और भले भारतवासियों का चित्त चुराने में मुझे भाषा की बाधा कभी ना पड़ी। उन्हें टूटी फूटी हिंदुस्तानी और टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी और उससे हमारी गाड़ी चल जाती थी। पर मैं तो इस प्रेम के प्रतिदान के रूप में तमिल तेलुगु सीखना चाहता।

तथा तमिल तो कुछ सीख भी ली। तेलुगु सीखने का प्रयास हिंदुस्तान में किया था, पर वह ककहरे के ज्ञान से आगे नहीं बढ़ सका। मैं तमिल तेलुगु नहीं सीख पाया और अब शायद ही सीख पाऊं, इसलिए यह आशा रखे हुए हूं कि ये द्राविड भाषा भाषी हिंदुस्तानी भाषा सीखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के द्राविड मद्रासी तो थोड़ी बहुत हिंदी अवश्य बोल लेते हैं, मुश्किल अंग्रेजी पढ़े लिखों की है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए अपनी भाषाएं सीखने में बाधा रूप हो, पर यह तो विषयांतर हो गया। हम अपनी यात्रा पूरी करें, अभी पोंगोला के कप्तान का परिचय कराना बाकी है। हम परस्पर मित्र बन गए थे। यह भला कप्तान प्लीमथ ब्रदरन संप्रदाय का था। इससे हमारे बीच नौका शास्त्र की बातों की अपेक्षा अध्यात्म विद्या की बातें ही अधिक हुई। उसने नीति और धर्म श्रद्धा में भेद किया। उसके विचार में बाइबल की शिक्षा बच्चों का खेल था। उसकी खूबी ही उसकी सरलता में थी। बालक स्त्री पुरुष सब ईसा को और उनके बलिदान को मान लें तो उनके पाप धुल जाएं। इस प्लीमथ ब्रदर ने प्रिटोरिया वाले ब्रदर के मेरे परिचय को ताजा कर दिया। जिस धर्म में नीति की रखवाली करनी पड़े वह धर्म उसे नीरस प्रतीत हुआ। इस मित्रता और आध्यात्मिक चर्चा की जड़ में मेरा अनाहार था। मैं मांस क्यों नहीं खाता? गोमांस में क्या दोष है? क्या पेड़ पौधों की तरह ही पशु पक्षियों को भी ईश्वर ने मनुष्य के आहार और आनंद के लिए नहीं सिर्जा है? ऐसी प्रश्नावली आध्यात्मिक चर्चा उत्पन्न किए बिना रह ही नहीं सकती थी। हम एक दूसरे को अपने विचार समझा नहीं सके। मैं अपने इस विचार में दृढ़ था कि धर्म और नीति एक ही वस्तु के वाचक हैं। कप्तान को अपने मत के सत्य होने में थोड़ी भी शंका नहीं थी। 24 दिनों के बाद यह आनंदप्रद यात्रा पूरी हुई और हुगली का सौंदर्य निहारता हुआ मैं कलकत्ते उतरा। उसी दिन मैंने बंबई जाने का टिकट कटाया।

अभी आप सुन रहे थे राम भजन, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरी मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और

0: उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में

0: क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लेरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन

0: Our correspondent reports that Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna.
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन स्टीप्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा आर रिवर्बरेटिंग विद द चैंटिंग्स ऑफ जय श्री कृष्णा. टुडे इज लॉर्ड कृष्णास बर्थडे एंड प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन आर अंडर वे थ्रू आउट द सिटी. लॉर्ड कृष्णास बर्थ एनिवर्सरी इज बींग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन एंड एंथुजियाज्म थ्रू आउट ब्रिज मंडल एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑल्सो. बट द ग्रैंड सेलिब्रेशन इज इन मथुरा वृंदावन वेयर ऑल टेम्पल्स आर डेक्ड अप फॉर मिडनाइट celebration. Flower petals and colorful lights are decorated everywhere. On this occasion, millions of devotees are already doing darshans of Lord Krishna. In view of the huge crowd of devotees coming from India and abroad, extensive security arrangements have been made in the entire Mathura city and police are also gearing themselves for traffic management. For the first time in Mathura, on Janmashtami today, 500 drones will bring Lord Krishna's birth and his various pastimes to life in the sky. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, लखनऊ.
0: The auspicious festival of Janmashtami is being celebrated

जी श्रोताओं, आज हवाओं में एक अलग खुशबू है, फिजाओं में एक अलग मिठास है, और हो भी क्यों ना, आज हमारे नटखट कान्हा माखन चोर यशोदा के लाला और हम सब के प्यारे श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।

जी दोस्तों, कान्हा का तो रूप ही ऐसा है, कोई उनका दीवाना कैसे न भला हो। कोई उन्हें अपने बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल बनाकर पूजता है, तो कोई उन्हें अपना सबसे पक्का सखा मानता है।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
3: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
7: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
6: जी डॉक्टर साहब,
7: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
8: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।

गाने सुहाने। आप सुन रहे हैं एफएम धर्मशाला के साथ सुबह के 8:44 और 50 सेकंड। और आज हम सब मना रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म दिवस।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी हाँ, कृष्ण भक्ति की सुगंध और बाल गोपाल की लीलाओं के रंग हैं आज चारों ओर, तो क्यों ना हम सब भी भक्ति के इस रंग में रंग जाएं कुछ इस तरह।

लगान फिल्म के इसी गीत के साथ थे। कार्यक्रम गाने सुहाने अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम जनवाणी।

0: जनवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, शुक्रवार का ये विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। और श्रोताओं, आज बहुत ही खास है ये दिन, कृष्ण जन्माष्टमी का। तो आज के इस कार्यक्रम में होगी बातचीत इसी विषय पर। जी हाँ, किस तरह से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी आपके यहाँ? कृष्ण की कौन सी लीला आपको बहुत अच्छी लगती है? श्री कृष्ण के सबसे प्रेरणादायक संदेश कौन से हैं? ये सब बातें होंगी आज के इस कार्यक्रम में। नंबर वहीं जाना पहचाना सा 01892224391। हेलो
1: हेलो सीमा जी, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
0: जी राधे राधे आपको भी और सभी श्रोताओं को भी। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
1: सीमा जी देखिए, बहुत दिनों के बाद आज आपसे रूबरू हुआ हूँ।
0: जी जी जी,
1: आप बहुत कम आते हैं, क्या बात है, बहुत खुशियां करते हैं।
0: चलिए, यूं ही आने जाने का सिलसिला रहता है, और कभी हम कभी कोई और। जी बताएं, आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, हमारा देश जो है अनेकता में एकता है
0: जी,
1: तो हमारे देश में हर दिन एक नया त्योहार, कोई नया कोई पर्व मनाया जाता है, और इसके हर त्योहार या पर्व मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक उपदेश होता है
0: जी।
1: कोई हमको सीख मिलती है, हमारे जीवन जीने का कोई ढंग है, उसको अच्छी तरीके से जीने का जो मतलब मिलता है
0: जी। बिल्कुल,
1: हम मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि भाद्रपद की अष्टमी के दिन जो है रात को देविका के घर पुत्र ने जन्म लिया था श्री कृष्ण का। और उसकी एक बहुत लंबी कहानी है
0: जी जी,
1: कि राजा मतलब जो कंस था उसकी बहन देविका थी, तो उसको आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे बहन के जो आठवां पुत्र होगा उस मतलब वो आठवां नहीं कहा था, उसने कहा था कि तुम्हारी बहन के जो पुत्र होगा उसके द्वारा तुम्हारी हत्या होगी, तुम्हारी जान जाएगी
0: जी, कंस का संहार किया जाएगा। बिल्कुल,
1: तो उसने ऐसा ठान लिया कि मैं देविका को, पहले तो उसने अपने पिता को अपने जेल में डाल दिया था, कृष्ण के नाना जो थे, तो उसके बाद फिर उसने अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया था कि जो भी इसकी संतान होगी मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी
0: जी। बिल्कुल,
1: उसने जो भी हुआ सात कन्या हो तो सातों को उसने मार डाला।
0: बिल्कुल, और कृष्ण जी, हाँ
1: कृष्ण जी का आठवां जन्म था जो, तो वो उसके जो देखिए कुदरत का जो करिश्मा है, तो रात को जो जितने पहरेदार थे, इतनी रात अंधेरी थी
0: जी,
1: बारिश भी होने लगी, और जाकर के उसने कृष्ण की माँ ने अपने पति को बोला कि जाओ इसको अपने उसके धर्म बहन थी यशोदा
0: जी,
1: तो उसके यहाँ छोड़े आओ
0: जी। बिल्कुल,
1: नंदलाल थे ना
0: जी जी जी जी,
1: उसको जाकर के जमुना नदी में गए तो कितनी बाढ़ आई हुई थी, तो फिर भी नदी उफान पर थी, तो कृष्ण जी की लाइफ इतनी थी कि वो नदी भी चाहती थी कि मैं कृष्ण का भगवान का जन्म हुआ है तो उसके चरण चूम लूं
0: जी। बिल्कुल, और यमुना जी ने कृष्ण जी के चरण छुए जी,
1: उसके तो साथ साथ कई लीलाएं उन्होंने की।
0: बिल्कुल,
1: तो देखिए एक लीला उन्होंने माता के प्रति की कि जब वो बच्चे थे तो मिट्टी खा रहे थे
0: जी, जी हाँ,
1: तो माता ने बोला कि बेटे मिट्टी मत खा
0: जी,
1: बोलते माता जी मैं मिट्टी फेरी खा रहा हूँ, तो उसने बोला तेरे मुख में क्या, जब उसने मुख खोला तो उनको तीनों लोकों का ज्ञान हो गया
0: जी, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपने मुख में दिखाया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और उसको कंस ने पता लग गया भी उसने कृष्ण जन्म ले लिया
0: जी,
1: पूर्णा को भी भेजा, जब उसने अपना स्तन पान कराया उसको भी मार डाला
0: जी जी जी। चलिए, बहुत सारी लीलाएं हैं श्री कृष्ण जी की, और आज का पूरा कार्यक्रम उन्हीं पे केंद्रित है, तो कार्यक्रम में कॉल की इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। जी जी,
1: और सबसे बड़ी सीख उन्होंने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन दी, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु, ज्यादा कर्म किएगा फल की इच्छा मत कर, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और उसके आप उसने उन्होंने बोला था अपने अर्जुन को कि देखो तुम क्या सोचते हो, जिनको तुम्हारा कोई भाई या बंधु कोई नहीं है,
0: जी जी जी,
1: तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे। तो इतनी उपदेश है गीता के,
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ा उपदेश जो है गीता सार में है।
0: जी बिल्कुल, और गीता सार तो बहुत कुछ कहता है, और बाकी श्रोताओं को भी मौका देंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए शुक्रिया
1: जी। ठीक है, धन्यवाद सीमा जी, नमस्कार
0: जी, धन्यवाद।

0: 01 ये है हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर और सभी श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आकाशवाणी धर्मशाला की पूरी टीम को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी का जो है व्रत होता है वो किया जाता है और सब अपना अपना करते हैं। और रही जो संदेश की बात जो है, कृष्ण का जो संदेश जो है अर्जुन को दिया था कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कि फल की चिंता आपके हाथ में नहीं, फल की चिंता मेरे हाथ में, आपके आपके हाथ में जो है कर्म करने की मतलब हमारा ये संदेश है कि हम कर्म करें और हम अगर फल की चिंता ना करें, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हम कर्म भी करें और फल की चिंता हम खुद ही करें, तो ये नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल, कर्म करते रहना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, यही कृष्ण जी का सबसे बड़ा संदेश था।
1: जी यही सबसे बड़ा संदेश था। और क्या बोलते, जब अर्जुन को लगा था कि मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं कि नहीं मेरे अपने भाई, तो उन्होंने बोला कि आप फल की चिंता आप करो, क्योंकि कई बार जब कोई जब धर्म के खिलाफ अगर अपनों से भी लड़ना पड़े तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मानो कि जब ये अधर्म से लड़ सकते तो फिर उनके लिए धर्म क्यों, क्या बोलते, इनके लिए धर्म क्यों काम करेगा? जब ये धर्म से लड़ रहे तो सच्चाई के लिए तो अधर्म का भी साथ अधर्म से लड़ना पड़ेगा। अगर जैसे छल से अगर वो लड़ रहे थे तो हमें भी छल से लड़ना चाहिए, ऐसे में कोई बात ही नहीं है।
0: परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनमें प्रसन्न रहना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, ये भी उनकी शिक्षा थी। जी
1: जी जी जी, जी, जी
0: बिल्कुल जी। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: जी
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जयकरण श्राफ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: श्राफ से जयकरण जी।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे?
1: आज ये जन्माष्टमी के बारे में ही है ना?
0: जी बिल्कुल। जी जी
1: देखो मैं तो इसको भी ऐसे ही मानता हूँ जैसे रामायण में वो मानते हैं ना, क्या बोलते हैं, छाई पर बुराई, बुराई पर छाई की जीत।
0: जी
1: उसी तरह से इसको भी बुराई पर छाई की जीत है, क्योंकि इन्होंने भी कंस को मारा था। और देखो जी अपनी बहन के बच्चों को भी मार देता था वो, ये मेरा ख्याल आठवीं लाद।
0: जी
1: हाँ, तो ये इक्टिकेबल बच पाए क्योंकि ये तो विष्णु भगवान का अवतार ही थे, इसलिए ये बच पाए। और बाकी इन्होंने जो काम करना था अपना वो कर दिया।
0: जी हाँ।
1: और माखन चोर के नाम से भी ये जाने जाते हैं जी।
0: बिल्कुल, तो बताएं आज किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है आपके यहाँ?
1: देखो ये मंदिर तो हमारे घर के पास, थोड़ा हमारा बैकवर्ड है ना एरिया,
0: जी जी।
1: थोड़ा पर मेरी बेटी ने रखा जन्म, ये क्या बोलते हैं, व्रत रखा है।
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी, तो उसको दूध दाल पिला रहे हैं।
0: बिल्कुल, और कान्हा जी का यही है कि छोटे बड़े सब उनके भक्त हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: है ना, कोई उन्हें अपना सखा मानता है, कोई उन्हें लड्डू गोपाल की तरह पूजता है। और राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें तो वो तो सदियों से निश्चल पवित्र प्रेम की एक मिसाल है।
1: मिसाल है जी, मिसाल
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: जैसे कौवा चराते थे वो
0: जी
1: बंसरी की धुन पे, जो थी अपनी दासियां वो दौड़ी चली आती थी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ऐसा इनके बारे में कहा।
0: चलिए एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुनते रहिए। जी धन्यवाद।

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी बोलिए, फिर कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस विशेष दिन पर?
1: जी, आप सभी को शुभकामनाएं। और दिन आपका जो टॉपिक है कि उनका क्या संदेश अच्छा रहा, तो मानव जीवन के लिए उनका तो बहुत संदेश है, लेकिन हमें जो जैसे बचपन में सीरियल भी देखते थे तो हमें जो अच्छा लग रहा उनकी कुछ बातें कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ये आज भी हम अपने जीवन में सबसे बड़ा मानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वही लौट कर हमें भविष्य में मिलता है।
0: तो क्या व्यवहारिक रूप में इसे अपनाते हैं आप?
1: बिल्कुल व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम तन मन से मानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कल चलकर हमें परेशानी हो सकता है या हमें उसका फल मिल सकता है, तो हम 100% उस चीज को अपनाते हैं।
0: जी हाँ, कहते हैं जो हम बोएंगे वही काटेंगे और जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है।
1: जी, और उनका जो एक और जो संदेश हमें देखने को मिला, जो उनका और जो सुदामा जी का मतलब मित्रता था, तो वो भी काफी बड़ा सीख देता है कि हमें छोटे बड़े या फिर किसी भी स्थिति में भेदभाव न करते हुए सच्चे मन से सच्चे पवित्रता के साथ रिश्ता निभाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और दोस्ती में अमीरी गरीबी की मुझे नहीं लगता कोई जगह है, बस उसमें दोस्ती का भाव होना चाहिए, वो मित्रता की गहरी हमारी वो दोस्ती होनी चाहिए, गहरी मित्रता होनी चाहिए।
1: जी
0: जी, तो आपके यहाँ किस तरह से मनाई जा रही है जन्माष्टमी?
1: होता है झांकी वगैरह, जिला मुख्यालय नजदीक है हमारे यहाँ गांव से, और गांव में भी छोटे रूप में छोटे जो दही हांडी वगैरह होता है तो संयम के साथ करते हैं, और गांव के लगभग सभी लोग

0: से ये मिलजुल कर मनाते हैं।
1: चलिए, आपसी मिलजुल कर ही इन त्योहारों का मजा जो है वो और दुगना हो जाता है। यूं ही मनाते रहिए मिलकर सभी त्योहार, और हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के साथ जुड़े रहिए यूं ही।
0: जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: आप सुन रहे हैं जनवाणी। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सभी श्रोताओं को, सारी आकाशवाणी को।
0: जी कौन बात कर रही है इतनी सुरीली सी आवाज में?
1: सुरीली सी आवाज कभी आकाशवाणी की रही है, इसलिए पहचानिए।
0: चलिए आप ही बता दीजिए।
1: मीनू बोल रही हूँ जी। मीनू नीरज,
0: बहुत बहुत स्वागत मीनू जी आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगी?
1: काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है
0: जी।
1: और मैं अपने सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आज के इस पावन दिवस पर। और जो आप कह रहे हैं कि इनके संदेश
0: जी,
1: इनके तो हर एक पग पग पर कुछ सीख हमें मिलती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इनके पूरे जीवन में इन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ आप मेरी पूजा ही करें
0: जी,
1: क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसे आदर्श और ऐसी चीजें करके गए जो जीवन को उस तरह से जीने का संदेश देते हैं
0: जी।
1: और दूसरी बात ये है कि जब न्याय के लिए खड़े होना है तो वहां अपना पराया नहीं होना है। अपनी इनर कॉल, अपनी आत्मा की आवाज, दिल की आवाज सुनकर क्या सही है क्या गलत है
0: जी,
1: वो हर व्यक्ति को बड़े आराम से पता चल जाता है
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हम गलत जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दिल की आवाज को दबाते हैं, है ना। तो उस चीज को सुनना है, वही आपके अंदर की कृष्णा की आवाज है जो आपको एक सही आवाज आ रही है, उसको दबाना नहीं है, क्योंकि सही रास्ता कहीं बाहर से नहीं, आपके अंदर से ही मिल रहा होता है
0: जी।
1: ठीक है, तो इस तरह से एक न्याय के लिए आवाज उठाना और अपने जीवन में मित्रता के लिए हर किसी को इक्वल समझना, एक जैसा समझना, सबसे प्यार भाव में रहना, यहाँ तक कि प्रकृति के एक एक कण से उन्होंने प्यार निभाया है
0: जी। बिल्कुल,
1: फूलों से, पत्तों से, बेलों से, गायों से, बछड़ों से, बांसुरी से, मतलब कहाँ नहीं है तभी इन्हें वासुदेवा कहा जाता है,
0: जाता है और कण कण में ये समाए हैं।
1: हाँ, क्योंकि हर कण में वो वास करते हैं। जब हर व्यक्ति उनको हर कण में देखना शुरू कर देता है तो नफरत जैसी चीज या ड्वेलिटी जिसे कहते हैं मैं और तू, ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं कहीं ना कहीं
0: जी।
1: तो ये सारी इतनी बड़ी बड़ी सी सीख देकर गए हैं, तो मुझे लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा तलाश करने से बहुत बेटर है कि इस कृष्णा को जो आपके अंदर है उसको जानो, उसको पहचानो, उसके साथ चलो, उस इंट्यूशन के साथ जुड़ो, उस एकत्व के साथ जुड़ो
0: जी,
1: जो एक और सिर्फ एक है
0: जी। हाँ,
1: वहाँ दो है ही नहीं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी दिनों के बाद
1: बिल्कुल
0: इसी बहाने मुलाकात हुई आपसे।
1: बिल्कुल, और मैं अपने श्रोताओं को, आकाशवाणी को बहुत मिस करती हूँ
0: जी। बिल्कुल,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए, थैंक यू
0: जी। आपने भी बहुत अच्छी बातें साझा की, इसके लिए शुक्रिया जी।
1: जी
0: श्रोताओं, तो कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं और जी हाँ, जब जब पाप पड़ता है धरती पर हमारी लाज बचाने आते हैं, और कृष्ण की ही बातें कार्यक्रम में आगे भी होंगी और साथ ही साथ बात करेंगे उनकी शिक्षा की, उपदेशों की। लेकिन फिलहाल समय हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, इसी के साथ ले चलते हैं आपको आकाशवाणी शिमला प्रादेशिक समाचारों के लिए, और कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत। न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान से जुड़े मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। देश सहित प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 26 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। और चंबा जिला की विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत होगी। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। मंच पर न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायिक सहयोग को और मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर प्रदेश के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शिमला के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर शहर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर और बालूगंज के गोपाल मंदिर में आज रात को विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। सुबह भगवान का विधिवत पूजन और श्रृंगार होगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाएंगे। दिन भर भजन कीर्तन से भगवान की लीलाओं का गुणगान होगा। रात भर जागरण के साथ श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद महापुराण के कृष्ण जन्म प्रसंग पर पाठ किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की गहरी प्रेरणा निहित है, जिसने निरंतर मानवता का मार्गदर्शन किया है। इधर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के

0: 26 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता लोकभवन शिमला में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV F-17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
2: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
1: यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
2: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
1: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
2: मैं आज ही जाती हूँ।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ ही आज चंबा जिला की विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा का आगाज हो गया है। आधिकारिक रूप से ये यात्रा राधाष्टमी यानी 19 सितंबर तक चलेगी। मणि महेश डल झील में आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सामने स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा पर आते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं जगह जगह लंगर की व्यवस्था के अलावा मेडिकल, घोड़े, खच्चर, अस्थायी आवास, संचार सेवा और हेली टैक्सी की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
4: इस बार आम श्रद्धालुओं के कुक्ति ट्रैक से मणि महेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पग उठाते हुए प्रशासन ने छोटी प्लास्टिक की बोतलों व छोटे चिप्स के पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं यात्रा ट्रैक पर नशीले पदार्थ बेचने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान दंझोह में BSNL का मोबाइल टावर भी स्थापित किया गया है, जिससे पहली बार यात्रियों को संचार सुविधा मिल पाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा का समाचार है। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में देर रात भारी बारिश हुई है। बारिश से जिले में सड़क, पेयजल व जल आपूर्ति योजनाएं बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नाहन रेणुका अवरुद्ध सड़क की बहाली का कार्य जारी है। वहीं नेहली धीड़ा में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर आवाजाही बंद है, जिसे देखते हुए यातायात को परिवर्तित किया गया है। जिले में जल शक्ति विभाग को बीते 24 घंटों में लगभग 68 लाख जबकि लोक निर्माण विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में अभी 95 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 43 ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाओं में असर पड़ा है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों

0: क्यों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में अब विधायकों की गाड़ियों में लगेगी विशेष झंडी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, हिमाचल कैबिनेट विस्तार पर फैसले की घड़ी, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अचानक दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कैग ने हिमाचल के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल, राज्य में कमाई से ज्यादा खर्च, राजस्व घाटा 6804 करोड़ पार, कर्ज का बोझ बरकरार। दैनिक जागरण लिखता है, वेतन पेंशन और सब्सिडी में चला गया 86% राजस्व। पंजाब केसरी की एक खबर है, कीरतपुर बिलासपुर मंडी मार्ग पर गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर होगी 80 किलोमीटर। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, शिमला के चैडविक फॉल का पानी पीने लायक नहीं, प्रदूषण का स्रोत तलाशे सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत, न्याय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान से जुड़े मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। देश सहित प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता 26 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित, और चंबा जिला की विश्वविख्यात मणि महेश यात्रा आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल, नई भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जानें।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम जनवाणी का शेष भाग।

0: जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी पर आज बात हो रही है इस कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं से नेगी बोल रहा हूँ
0: जी। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर और किस तरह से मनाई जा रही है, पहले ये बताइए जन्माष्टमी आपकी तरफ।
1: मैडम जी, सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और
0: जी आपको भी।
1: जो मेरा गत वर्षों का जो अनुभव है, तो कृष्णाष्टमी के उपलक्ष्य में जिस तरह से लोग व्रत रखते हैं और रात को जो झूला लगाया जाता है कृष्ण जी का, उसके बाद अगले दिन जो है वो मिट्टी के जो दही हांडी का जो सड़कों के ऊपर उत्सव मनाया जाता है, हिमाचल में इसका काफी प्रचार प्रसार और विकास हो रहा है, जो मटकी फोड़ने का जो है
0: जी।
1: तो ये इस तरह से मैं तो ये महसूस रहा है धर्मों मालाओं और विभिन्न सामग्रियों जो बिजली की जो लाइटें वगैरह हैं वो लोगों ने पिछले कल से ही लगाना शुरू कर दी हैं। और भगवान कृष्ण को जो माखन चोर कहा जाता है, तो दही हांडी का खेल भी उसकी भी तैयारियां की गई हैं जगह जगह
0: जी। जी जी।
1: तो इस तरह से जो हमारे इस पवित्र दिन पे जो हिंदू लोग, जो हमारे परिवार के लोग उपवास रखते हैं, जो फल आहार बनाते हैं और दुनिया को जो बुराई से छुटकारा दिलाने का जो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया है, और जो सकारात्मक कर्म और भक्ति का जो सिद्धांत और गीता में जो उपदेश दिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: और महाभारत के रूप में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये कुल मिलाकर के बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। और मैं मतलब कि दुखी और समृद्ध जीवन के लिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और सुझावों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से पालन भी करना चाहिए जी।
0: बिल्कुल, सत्य का साथ देना है,
1: अच्छे कर्मों को प्रेरित करके और बुराई के उन्मूलन के लिए आदमी को

0: प्यार जता दुश्मन से और युद्ध कर युद्ध कर। तो ये समाज में जिस तरह से इस तरह के लोग होते हैं तो उनका भी मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और भगवान सबको मौका देता है
1: जी।
0: और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को तोड़ते हैं या वो करते हैं, तो आदमी को धैर्य रखना पड़ता है थोड़ा सा, और ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हमेशा समाज में आपको जो कमजोर लोग हैं उनके लिए भी आपको खड़ा होना, खुद के लिए तो खड़ा होते ही हैं सब कोई।
1: जी जी। और अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते रहें, दूसरों के लिए प्रेम रखें, मन में करुणा रखें। जी हाँ,
0: कर्मण्येव वाचिकार्थे मा फलेषु कदाचन। तो ये गीता के जो सार है, जो गीता के जो संदेश है, बच्चों को गीता भी पढ़नी चाहिए। और आज का दिन जो भजन पाठ भक्ति गीत गाना जो भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने की जो पद्धति है उसको भी अपनाना चाहिए। और इसमें हर व्यक्ति को जो है वो अपना सहयोग देना चाहिए। और हिंदू धर्म के इस प्रमुख त्योहार को जो है सब खुशी खुशी से मनाएं
1: जी।
0: और सबको जो है वो बहुत बहुत तहे दिल मुबारकबाद
1: जी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छी बातें साझा की आपने हमारे साथ। यूं ही सत्य का साथ देते रहिए और अपने कर्तव्यों को भी निभाते रहिए। नागेंद्र सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जी अमर सिंह दसवां गांव पंजाब से हैं।
0: जी
1: तहसील कोलाथा जिला कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं तो किस तरह से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है आपके पंजाब में?
1: मैडम जी श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है आज है
0: जी।
1: दूसरा है तो आज आज ठंड का भी जन्म आज हुआ है
0: जी।
1: तीसरा है कि जो बदली जगजी है ना ऊपर आसमान में
0: जी जी
1: उसका उनका उसका जन्म भी आज हुआ था।
0: जी
1: आज
0: जी
1: आज हमारे रात को ना था
0: जी
1: जो बदली जगजी है ना उसका भी जन्म आज हुआ था। तीसरा पता था मैडम जी देखा हेलो
0: जी जी कहिए।
1: कैसा क्या है ना एक तिवारी गोत है ब्राह्मणों की उत्तराखंड में बहुत होते हैं तिवारी गोत है वो ना रक्षाबंधन नहीं मानते हैं वो आज के आज उनके दिन में रक्षा बांधते हैं और जिंदगी जो बदलते हैं ना ब्राह्मण लोग हिंदू लोग क्योंकि आज के दिन ये बदलते ऐसे तो रक्षाबंधन वाले दिन जीवन बदलते हैं ना
0: जी। और आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है हमें।
1: हमें
0: जी
1: रक्षाबंधन भी आज ही मनाते हैं तिवारी लोग जो है ना कहीं उनका बुजुर्ग पूरा हो गया था कहीं रक्षाबंधन वाले दिन हजारों साल पहले
0: जी जी
1: तिवारी लोगों का तो आज के दिन मानते हैं रक्षाबंधन को जिन्हें भी आज ही बदलते हैं
0: जी हाँ। और स्नान का भी बहुत महत्व रहता है आज के दिन।
1: और जैसे एक गाना है ना
0: जी
1: राधा क्या गोरे क्या काला
0: जी
1: हाँ। राधा क्यों काला
0: जी हाँ
1: काली अंधेरी आया काली कमली वाला इसलिए काला यशोमती मैया से पूछे नंद लाला राधा क्यों गोरी
0: बिल्कुल जी जी। सांवले सलोने से हमारे कान्हा जी और इसीलिए उन्हें जो है वो काला कहा जाता है या जिस तरह से आपने कहा कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला तो कान्हा जी के बहुत सारे रूप हैं। और यूं ही आप जन्माष्टमी मनाते रहिए और साथ ही साथ आकाशवाणी धर्मशाला के साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम में कॉल किए इसके लिए शुक्रिया जी। तो सभी श्रोताओं से गुजारिश की कॉल करें हमें और 01892 224391 ये है हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर।

0: जी श्रोताओं, कृष्ण हमें सीख देते हैं कि जीवन में खुशी केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आती है। इसलिए मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाइए।
1: हेलो जी,

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी, मैं रतन चंद बात कर रहा हूँ।
0: जी रतन चंद जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं
1: मैं ज्वाला जी से।
0: जी? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के हमारे इस विषय पर?
1: मैडम जी, अपने अपने तरीके से सब बना रहे हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, घरों में भी लोगों ने बनाया हुआ है, वहां कर रहे
0: जी
1: हैं, व्रत रखे हुए हैं और उस रात के 12 बजे तक के प्रोग्राम चलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भगवान कृष्ण की दया जिसके ऊपर हो, उनके हाथ जब सर पर हो, तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो अपने आशीर्वाद से आदमी को सीधे रास्ते पर ले जाते हैं। इसका एक तुलसीदास जी का एक दोहा है बहुत कि तुलसी नर का क्या बड़ा, हमें बड़ा बलवान,
0: जी
1: भीलन लूटी गोपियां, बही अर्जुन बही बाण। जब भगवान कृष्ण जी द्वारका से स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि भाई अर्जुन, इन गोपियों को आप मथुरा वृंदावन गोकुल जहां जहां भी हैं, इनको छोड़ के आओ वहां पे। तो जब उनको ले जा, अब देखिए अर्जुन लेके जा रहे हैं उन गोपियों को, और रास्ते में भीलो ने वो गोपियां जो लूट ली, छीन ली
0: जी
1: अर्जुन से। तो तुलसीदास जी बड़ा जो इस दोहे में बोलते हैं कि देखो, वो ही अर्जुन है जिसने पानी में नीचे देख के अपने बाण से मछली की आंख पे निशान लगाया था, जिसने कौरवों के साथ युद्ध में चुन चुन के उनका कोई बाण खाली नहीं जाता था।
0: जी।
1: तो उन्होंने बताया कि इसका कारण यह था कि उस वक्त भगवान कृष्ण का हाथ जो था वो उनके सिर पर था। जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो समय भी परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बन जाती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उनके जो दी हुई सीखे हैं उन पर चलना चाहिए, तो आपको कामयाबी मिलेगी और हमेशा आपका शुभ होगा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया विचार आपके, और बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं भी सभी श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से कि सबका शुभ होगा।
1: धन्यवाद।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी श्रोताओं, सुने 0108922243 91 यह है हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर, और जन्माष्टमी का उत्सव आज हम मना रहे हैं और श्री कृष्ण के संदेश अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी ले रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं राजगढ़ ब्यावरा से गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई गांव से।
0: जी बताइए, किस तरह की धूम है जन्माष्टमी की आज?
1: हाँ, आज रात का प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रात का प्रोग्राम रहता है, शाम से सुबह तक।
0: जी
1: जी, मंदिर में रहता है हमारे यहाँ। जी, और
0: जी
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो हमने कही चलो थोड़ा सा मौका हमको भी मिल जाए तो अच्छी बात है आपके यहाँ।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई एक संदेश जो आपको प्रेरित करता है, कृष्ण का? जी हेलो,
1: हेलो,
0: कोई है, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा कोई उपदेश? जी चले गए ये, और कृष्ण के ही संदेशों की बात आज हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो जीवन में हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। हमेशा मुस्कुराने का, प्रसन्न रहने का उनका ये संदेश रहता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मैडम जी,
0: जी बोलिए।
1: आज ये कृष्ण जन्माष्टमी है,
0: जी
1: आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी,
0: आपको भी शुभकामनाएं। जी
1: ये कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर तो प्रसिद्ध है ही सरी, पर उसके अलावा यहाँ पर एक गोपाल मंदिर

0: है,
1: जी
0: पुराना इतिहास मतलब बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर गोपाल मंदिर। और उसके अलावा यहाँ पर ये उज्जैन में सांदीपनि आश्रम है।
1: जी
0: इस सांदीपनि आश्रम में यहाँ का इतिहास बताता है कि कृष्ण भगवान ने 64 दिन की जो पढ़ाई की थी मथुरा से आने के बाद में, जैसे मथुरा में जन्म हुआ उनका, और जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त की थी ना 64 दिन की, वो यहाँ इस आश्रम में की थी उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में। और श्री कृष्ण भगवान की सुदामा जी से जो दोस्ती हुई थी, मुलाकात हुई थी, वो इसी आश्रम में हुई थी।
1: जी
0: तो ये यहाँ पर उज्जैन में यह आश्रम भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जब वो माता जी ने उनको लकड़ी चुनने के लिए भेजा था कृष्ण
1: जी
0: भगवान जी और सुदामा जी को,
1: जी
0: तो 15 किलोमीटर दूर एक नारायणा गांव है। तो वो नारायणा गांव में मैं जब कृष्ण भगवान और ये रात को जब समय अधिक हो गया, शाम के समय और बारिश होने लग गई, तो वो उसी गांव में रह गए थे, पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे और वो लकड़ियां नीचे गठड़ी रख दी थी। तो वो जो लकड़ियों का जो गट्ठा था ना, वो उसने पेड़ का रूप धारण कर लिया था और फिर वो आज भी पेड़ और वो मंदिर फिर वहां पर बन गया, और वो मंदिर आज भी वहां पर है, और वो लकड़ियों से जो पेड़ बने थे वो भी आज वहां उपलब्ध है।
1: जी
0: जी यहाँ उज्जैन का ऐसा इतिहास बताता है मैडम।
1: चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी साझा की आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी जी, अब आपको मेरी तरफ से राधे राधे प्रणाम। पुष्करनाथ शर्मा, जम्मू कश्मीर, जिला डोडा, तहसील ठाठरी, गांव कंठी से बात कर रहा हूँ।
0: जी आपको भी राधे राधे, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: बहुत बहुत अच्छा है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विषय रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। हमें सबसे ज्यादा मुझे जब श्री कृष्ण जी बचपन में वो लीला करते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है। जब उन्होंने जब वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो जब उन्होंने गेंद फेंकी थी नीचे साथ में, तो वो गेंद लाने के लिए गए थे, फिर नागराज को नाता उन्होंने, वो मुझे बड़ा वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी श्री कृष्ण की लीलाओं की बात कर रहे हैं आप?
1: जी
0: जी, तो श्री कृष्ण का कोई प्रेरणादायक संदेश जिसे आप अपने जीवन में हमेशा अपनाते हैं?
1: जी
0: वही पूछ रहे हैं, कोई ऐसा संदेश जिसे आप अपने जीवन में साथ लेकर चलते हैं?
1: जी जी, हम सबसे पहले तो यही। हेलो
0: जी जी, आप जी

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
0: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी जल्दी से बोलिए, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
0: जी थोड़ा सा विषय बताइए, मैं अभी जुड़ा हूँ।
1: बहुत ही खास दिन है आज, जन्माष्टमी का पावन पर्व हम मना रहे हैं, तो इसी पर बातचीत हो रही है।
0: जी, कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ पर भी मतलब धूमधाम से मनाई जाती है। अभी शाम को मतलब भजन कीर्तन भी होंगे, मंदिर पे प्रोग्राम रखा जाता है और अपने अपने सोसाइटी से सभी लोग आते हैं
1: जी,
0: और खाना जी को बधाई देते हैं, आरती होती है और अच्छा मतलब त्यौहार मनाया जाता है जी।
1: चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसा संदेश जो आप के आपको प्रेरित करता है, कृष्ण जी का या गीता का कोई सार या गीता जग का कोई संदेश?
0: जी, कृष्णा जी ने तो बहुत ही अच्छी अच्छी रासलीलाए की है, साथ में उनने गीता में जो उपदेश दिया है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हम तो बस इसी से प्रेरित हुए हैं और काम करते रहते हैं
1: जी।
0: जो भी फल देगा भगवान हमें अच्छा ही देगा।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी, और इसी मंगल कामना के साथ आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद जी।

जी श्रोताओं, तो कान्हा जी की कृपा आपके जीवन में यूं ही बनी रहे, प्रेम शांति और खुशियों की वो रोशनी यूं ही आपके जीवन में भरती रहे, आपकी हर सुबह उम्मीद से भरी हो और हर शाम कृष्ण की भक्ति से सरोबोर हो। इसी के साथ लेते हैं आपसे अनुमति। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनवाणी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। गीतों का कारवां कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कोहिनूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी, गीतकार थे शकील बदायनी, संगीतकार नौशाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आपके रेडियो सेट पर है संघर्ष फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है। इस फिल्म के लिए संगीत दिया संगीतकार नौशाद अली ने।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: संघर्ष फिल्म का नगमा भी आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की थी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए, सुनिए खुददार फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

0: सचिन देव बर्मन की बनाई तर्ज पर अनुराग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की थी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, आहा।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में डॉन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिस मैरी फिल्म की भक्ति रचना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त एकता। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं लक्ष्मी की आवाज़ में।

अभी ये कृष्ण भजन आपने सुना शक्तिचंद और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं सुनील राणा की आवाज़ में।

अभी ये लौकी सुना आपने धनीराम और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं शेर सिंह का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं, जहां आज दिन भर भजन कीर्तन से भगवान की लीलाओं का गुणगान होगा और रात भर जागरण के साथ श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के कृष्ण जन्म प्रसंग का पाठ किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां और ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ ही आज चंबा जिला की विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा का आगाज हो गया है। आधिकारिक रूप से ये यात्रा राधाष्टमी यानी 19 सितंबर तक चलेगी। मणि महेश डल झील में आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सामने स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा पर आते हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वहीं जगह जगह लंगर की व्यवस्था के अलावा मेडिकल, घोड़े, खच्चर, अस्थायी आवास, संचार सेवा और हेली टैक्सी की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: इस बार आम श्रद्धालुओं के कुकती ट्रैक से मणि महेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पग उठाते हुए प्रशासन ने छोटी प्लास्टिक की बोतलों व छोटे चिप्स के पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है, तो वहीं यात्रा ट्रैक पर नशीले पदार्थ बेचने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान दंझोह में BSNL का मोबाइल टावर भी स्थापित किया गया है, जिससे पहली बार यात्रियों को संचार सुविधा मिल पाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 26 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता लोक भवन शिमला में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा का समाचार है। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में देर रात भारी बारिश हुई है। बारिश से जिले में सड़क, पेयजल व जल आपूर्ति योजनाएं बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नाहन रेणुका अवरुद्ध सड़क की बहाली का कार्य जारी है। वहीं नेहली धीड़ा में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर आवाजाही बंद है, जिसे देखते हुए यातायात को परिवर्तित किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिनों में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जय हिंद गीतमाला। देशभक्ति गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हरिहरन के गाए इस देशभक्ति से, जिसे हमने लिया है फिल्म रोजा से।

लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में फिल्म फना का ये गीत, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जय हिंद गीतमाला, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जय हिंद गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब कार्यक्रम में अगला देशभक्ति गीत जो है हम सुनवा रहे हैं, फिल्म LOC कारगिल से, और इस देशभक्ति गीत को गाया है सोनू निगम ने।

अभी आप सुन रहे थे जय हिंद गीतमाला FM बैंड 103.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं और प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायोलैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
2: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
2: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओ जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
2: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती।

0: जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
1: जी,
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे, उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी

0: बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
1: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
2: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
1: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
2: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
1: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
2: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
2: भाई बता दूंगा ना बेटी।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
2: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
1: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
2: सच्ची भाई?
1: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी।
7: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद।

0: चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरिधर गोपाल का चरणामृत।
1: की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी वो
2: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
1: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या क्या मालूम विष हुआ तो?
3: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
11: जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
11: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
12: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
11: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
11: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थीं।

0: परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
1: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
2: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
3: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
2: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: फिर एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: गीता अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज़। हाँ। सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
3: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
6: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
8: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
9: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
8: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
9: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
10: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
9: और चींटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं सैनिक भाइयों का कार्यक्रम।

भी आपने सुना। इस गीत को गाया था रूप कुमार राठौड़ और साथियों ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रॉकस्टार से।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। कार्यक्रम की अगली पेशकश सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

राजनीति फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की, इरशाद कामिल के बोलों को संगीत में ढाला था प्रीतम चक्रवर्ती ने, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

जर्सी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें सचित टंडन और परंपरा ठाकुर की, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत।

सैयारा फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सखियां अपना कार्यक्रम सुनेंगी, सुनो सखी।

माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, आओ खुशी मनाएं उनके जन्मदिन की जिन्होंने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। जी हाँ श्रोता सखियों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, तो आप सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में स्वागत, अभिनंदन और साथ ही साथ आप सबको जन्माष्टमी

की ढेरों शुभकामनाएं। सखियों कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ विश्वास है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ उम्मीद की एक छोटी सी किरण है वहाँ भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं और हमारी प्यारी सी श्रोता सखियों को हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी की सखियों धूम है, मंदिरों में राधे कृष्ण के नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। सखियों आज का दिन आस्था का, भक्ति का, उल्लास का और उस दिव्य मुस्कान को याद करने का दिन है जिसने सदियों से करोड़ों दिलों को अपना बनाकर रखा है। सखियों हमारे जिला कांगड़ा के नूरपुर के जन्माष्टमी भी बहुत प्रसिद्ध है। आज यहाँ रौनक देखते ही बन रही है। मथुरा वृंदावन में भी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तो सखियों आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, और कार्यक्रम में मनोरंजन के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, आज हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। आप तो जानती ही हैं कि जो श्री कृष्ण थे वो देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र थे और मथुरा के राजा कंस श्री कृष्ण के मामा थे। जब कंस अपनी बहन देवकी को उनके विवाह के बाद उन्हें उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तब आकाशवाणी से ये सूचना मिली कि उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। ये सुनकर उन्होंने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी 7 संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो रात के 12 बजे थे, सारे पहरेदार सोए हुए थे। तब वासुदेव ने अपने मित्र नंद के घर जाकर कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया और उनकी पुत्री को वो ले आए। इस बार भी कंस ने उस पुत्री को देवकी की 8वीं संतान समझकर पत्थर पर पटक कर उसे मार डाला और श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पले बढ़े। सखियों, इनके जन्मदिन पर मंदिरों को खूब सजाया जाता है। हमारे घरों में भी सखियाँ अपने मंदिरों को, अपने बाल गोपाल को खूब सजाती हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है, मंदिरों में झांकियां निकाली जाती है, कहीं कहीं दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर ऐसे वक्त हुआ था जब अत्याचार और भय का वातावरण था। श्री कृष्ण का जन्म सखियों हमें ये संदेश देता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। श्रोता सखियों, जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं बल्कि अच्छाई और सकारात्मकता का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए कृष्ण केवल आराध्य ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा भी हैं। हमारी सखियों ने भी अपने घर में बाल गोपाल रखे होंगे। जी हाँ, लड्डू गोपाल रखे होने, जिन्हें वो आज सजाकर झूला झूला रही होंगी। सखियों, जन्माष्टमी के दिन हम तरह तरह के फलाहार अपने घर में बनाती हैं। भगवान को माखन मिश्री और 56 भोग लगाए जाते हैं। इस दिन हमारे घरों में पंजीरी भी बनाई जाती है। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें बाल गोपाल और राधा के वस्त्र पहनाकर उन्हें तैयार करते हैं। कृष्ण को नटखट माखन चोर भी कहा जाता है। सखियों, जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं, घरों में भी बाल स्वरूप की पूजा भजन कीर्तन किए जाते हैं, कहीं कहीं झांकियां सजती हैं, कहीं रासलीला होती है, तो कहीं बच्चे

कृष्ण राधा का रूप धारण कर इस पर्व की खुशियों को और बढ़ा देते हैं। सखियों, इस जन्माष्टमी पर आप अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़िए, नई उम्मीदों को अपनाइए और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सकारात्मकता को संजोइए। आज के दिन हम तो भगवान श्री कृष्ण से यही चाहते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आए, आपके घर आंगन में खुशियों की मुस्कान बनी रहे और आपके हर सपने को पूरा होने का अवसर मिले। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी में स्वागत है। सखियों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार को हम सेगमेंट लेकर आते हैं उड़ान का। आज की हमारी उड़ान भी एक ऐसी हिमाचली बेटी के नाम है जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपनी मेहनत और प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई। उड़ान यानी सपनों को पंख देने की उड़ान मुश्किलों के सामने हार ना मानने का हौसला रखती है। हमारी ये बेटी सुषमा वर्मा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने वाली सुषमा वर्मा की कहानी किसी प्रेरक फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। लेकिन इनके बारे में सखियों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्रिकेट बचपन में उनका मनपसंद खेल नहीं, बल्कि वे हैंडबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दूसरे अन्य खेल खेला करती थी। क्रिकेट से उनका परिचय देरी से हुआ और सन 2009 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की धर्मशाला स्थित महिला आवासीय क्रिकेट अकादमी में ट्रायल देने का फैसला लिया। पर खास बात सखियों ये थी कि उस वक्त तक उन्होंने क्रिकेट को खेल के रूप में सीखा ही नहीं था। जब ट्रायल हुआ तो उन्होंने पहले गेंदबाजी की, फिर बल्लेबाजी की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर कोच ने उन्हें विकेट कीपिंग करने को कहा और जानती हैं यही फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने विकेट कीपिंग के लिए दस्ताने पहने, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोचिए सखियों, जिस लड़की ने क्रिकेट की शुरुआत को ही देरी से की हो, वही भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना देखने लगे और आखिरकार एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर पूरे देश का गौरव बढ़ाए। किसी ने सखियों सच ही कहा है, सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते और जिन्हें पूरा करने के लिए हम पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। और जब कोई सपना जो है पूरा करना हो तो हमें अपने सपनों को पूरे विश्वास से जुट जाना है पूरा करने के लिए। फिर उसकी उड़ान सिर्फ उस इंसान की नहीं रहती, पर उसके साथ उड़ता है उसका परिवार।

उसका प्रदेश और उससे प्रेरणा लेने वाले हजारों लोग। बस हमें ये याद रखना है कि अगर रास्ते में मुश्किलें हैं तो हमें अपने पर विश्वास को और भी मजबूत बनाना होगा। सुषमा वर्मा जब ट्रेनिंग करती थी तो उन्होंने अपने आराम से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर फोकस किया। उनके पास सुविधाएं सीमित थी, अनुभव कम था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। पर सखियों, जब सपना बड़ा हो तो रास्ते की छोटी छोटी मुश्किलें हमें रोक नहीं पाती। इसी तरह सुषमा वर्मा को भी चुनौतियां हरा नहीं पाई। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर खिलाड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है। सन 2013 में भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भी अपने देश का नाम जो है रोशन किया। उनका भारतीय टीम में पहुंचना हम सब के लिए ऐतिहासिक क्षण था। सखियों, ये सोचने वाली बात है कि एक पहाड़ी गांव की बेटी जिसने इस खेल को देर से खेला, और वही लड़की एक दिन पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई। सुषमा वर्मा की कहानी से हमें ये सीखना है कि हम कहाँ से आती हैं ये ज़रूरी नहीं, ये चीज़ हमारी मंजिल तय नहीं करता। हमारी मेहनत, हमारा हौसला जो है हमारी मंजिल तय करता है। जी हाँ, जैसे सुषमा ने विकेट कीपिंग को अपना प्रोफेशन बनाकर हिमाचल की अंडर 19 टीम में आगे बढ़ी और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। सखियों, इसी तरह अगर आपके पास भी प्रतिभा है तो उसे मेहनत की ज़रूरत है, और अगर आपके पास सपना है तो उसे अनुशासन की आवश्यकता है। बस जीवन में ये याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें हैं तो आपको अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। कार्यक्रम में आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक और प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इसी गीत के साथ अब अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। इसी के साथ प्यारी सखियों, नमस्कार, हैप्पी जन्माष्टमी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने को हैं। अब पहले आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV...
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीवन में कविता क्या मायने रखती है और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते? एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्द शैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा, आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है। आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार हैं नीरज।

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है।

तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे ये कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, परिवार है। धरती केवल मिट्टी नहीं, माँ है। आकाश केवल विस्तार नहीं, पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है, और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है, और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएँ लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियाँ, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियाँ आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियाँ आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियाँ हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियाँ मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियाँ याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियाँ याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म भाभी की चूड़ियाँ का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छल के, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही हैं या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है, और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुँचती है, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य, और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं, और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियाँ आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियाँ हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियाँ आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियाँ हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं,

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद है।

हालांकि है ना वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं और इन्हें आज भी याद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वतन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादंबिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, देवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब

तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है। रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है। सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है। ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं। अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज़ मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं, बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाएं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं, क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर, आंखों पर आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज़, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया ये गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है।

0: क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
1: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए, इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
1: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
2: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी, वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आवाहन किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधी जी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त कर मात्र 17 वर्ष की आयु में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया जाता था।

0: 1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही ये पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ ये संपूर्ण देश भर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए.के. फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत

0: प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष

0: अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहेब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का यह है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म CID से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन OP नैयर की है।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग से हर वर्ष करीब 6,000 करोड़ रुपए का योगदान होता है और सेब बागीचों के लिए कैन उर्वरक एक भरोसेमंद और किफ़ायती स्रोत है। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से उर्वरक निर्माताओं को कैन के उत्पादन और इसकी उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। शिमला के गंज बाजार में स्थित ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। इस दौरान लोग कान्हा के भजनों पर झूम उठे और भक्ति रस में सराबोर होकर नृत्य किया। उधर सोलन में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। सोलन के राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कार्यक्रमों में भाग लिया। आज रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।
1: आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और इस दिन सभी लोग बड़े धूमधाम से उल्लास से व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, नृत्य करते हैं और छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में भगवान कृष्ण की लीलाएं करते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास से नृत्य भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की मैं एक प्रार्थना करता हूँ भगवान कृष्ण राधा मैया से, राधे कृष्ण के सबके ऊपर अच्छे से कृपा करें, विकारों से दूर रखें, अच्छी दृष्टि प्रदान करें।
2: आज हमारे हरि मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रात को 12 बजे इनका जन्म होगा, उसके बाद भोग प्रसाद और सारा भाव बहुत है ठाकुर जी के लिए। हमें राधा रानी की पूरी कृपा है, ऐसे ही बनाए रखे, सबके ऊपर राधा रानी कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद बना। हमने भगवान के लिए व्रत रखा है और
3: वैसे रोज इस मंदिर आते हैं पर आज कुछ अलग ही उल्लास है हमें यहाँ पे आने का। हम बहुत खुश है ठाकुर जी, ठाकुरानी जी की कृपा से उन्होंने हमें अपने यहाँ सेवा में बुलाया। सभी लोग

0: बुजुर्ग बच्चे सभी यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं, सभी जन्माष्टमी मना रहे हैं, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। इसी तरह सभी देशवासी खुश रहे, वह ठाकुर जी का जन्मदिन मनाए।
1: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 सड़क सुरक्षा व रखरखाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क अवसंरचना की तत्काल बहाली का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मुरम्मत का खर्च और जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सड़क किनारे निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिलवद्धानी भुवजोत कुल्लू मार्ग को राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रूप में विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भुवजोत सुरंग और इस मार्ग के निर्माण से जोगेंद्र नगर से कुल्लू के बीच की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा ये सड़क लेह लद्दाख सीमा की ओर जाने वाली सेना के लिए भी सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बनेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसके लिए DPR का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 68 किलोमीटर होगी और इसमें 4 बड़े पुल व 4 सुरंगें बनाई जाएंगी। इसके निर्माण को लेकर लगभग 163 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनें सामयिक चर्चा। विषय है मणिमहेश यात्रा और जन्माष्टमी का ऐतिहासिक महत्व। वाचक स्वर राकेश शर्मा।
1: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है एक ऐसा धाम जिसे साक्षात महादेव का घर कहा जाता है। समुद्र तल से 13,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन ही मणिमहेश डल झील में पहला आधिकारिक शाही स्नान होता है, जिसे छोटा नहाण भी कहते हैं। इसी दिन से यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा, लंगर व चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से शुरू की जाती हैं। स्थानीय गद्दी जनजाति की प्राचीन ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव वर्ष के 6 महीने मणिमहेश कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन ही भगवान शिव सृष्टि के संचालन की बागडोर भगवान विष्णु को सौंपकर पाताल लोक चले जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए उनके जन्मदिन जन्माष्टमी को शिव और विष्णु के इसी मिलन व विदाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन शिव वापस पाताल से भरमौर लौटते हैं। हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक मणिमहेश यात्रा का समय जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी पर समाप्त होता है। ये 15 दिन की अवधि दर्शाती है कि शिव भूमि पर जाने का मार्ग और समय नारायण के उत्सव से तय होता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी की रात या उसके अगले दिन तड़के सुबह यदि मौसम बिल्कुल साफ हो तो मणिमहेश चोटी पर एक दिव्य अलौकिक चमक दिखाई देती है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव के मुकुट की मणि मानते हैं। जन्माष्टमी के पवित्र मुहूर्त पर इस घटना को देखना अत्यंत फलदायी और सौभाग्यशाली माना जाता है। प्रशासनिक घोषणा के अनुसार मणिमहेश यात्रा 2026 की आधिकारिक अवधि 4 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक तय की गई है। राधाष्टमी के दिन होने वाले स्नान को बड़ा नहाण कहा जाता है। प्रशासन ने समूचे यात्रा ट्रैक को 13 सेक्टरों में बांटा है। 1,000 से अधिक पुलिस और होमगार्ड जवान व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। हड़सर से डल झील तक 13 किलोमीटर से ज़्यादा का पैदल मार्ग संकरा और खड़ी चढ़ाई वाला है। दूसरी ओर चंबा जिला प्रशासन ने भी श्री मणिमहेश यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस के साथ NDRF और SDRF के जवानों की भी तैनाती की गई है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल,

0: विद्युत, स्वास्थ्य, शौचालय सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया है। बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे यात्रा क्षेत्र को 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है तथा संचार व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था भी की गई है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मथुरा की कालकोठरी का सन्नाटा तोड़ते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण का यह अवतार इस शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि अत्याचार और निरंकुशता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के समक्ष इसे झुकना ही पड़ता है। जन्माष्टमी के हर वर्ष इसी अमर सत्य का स्मरण कराती है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, धर्म का प्रकाश सदैव विजयी होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और पर्व अतीत की घटनाओं का स्मरण मात्र नहीं बल्कि वर्तमान जीवन को दिशा देने वाले प्रकाश पुंज हैं। जन्माष्टमी सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का ऐसा महाकुंभ है जो समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोता है। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन सिखाता है कि धर्म मंदिरों की चारदीवारी या पूजा पाठ के कर्मकांडों तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर आचरण, कर्तव्य और संघर्ष में निहित है। गोकुल की गलियों में माखन चुराने वाले नटखट बालकृष्ण हों या कुरुक्षेत्र के समसांगरण में अर्जुन को निष्काम कर्मयोग दिखाने वाले जगतगुरु, प्रभु का हर रूप जीवन जीने की एक पूर्ण कला प्रस्तुत करता है। वे प्रेम, करुणा, रणनीति, न्याय और शौर्य का ऐसा संगम है जिसकी मिसाल विश्व इतिहास में अनंत नहीं मिलती। बाल्यकाल में ही कृष्ण ने अपने आचरण से तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को नया रूप दिया। गोवर्धन पर्वत को कनिष्का उंगली पर उठाकर उन्होंने संदेश दिया कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण मानव जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इंद्र का अहंकार ध्वस्त कर उन्होंने दिखाया कि लोक कल्याण ही वास्तविक पूजा है। ग्वाल बालों, पशुपालकों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को संगठित कर उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अपनी शक्ति पर भरोसा करके ही किसी अत्याचारी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई गीता का मार्गदर्शन किसी एक पंथ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के आंतरिक बाह्य संशयों का समाधान है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, विषय था मणिमहेश यात्रा और जन्माष्टमी का ऐतिहासिक महत्व। वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत

0: बढ़िया है। होम गृहिणी
1: और बताइए आप क्या करती हैं?
0: हूँ, घर पर ही रहती हूँ।
1: जी
0: 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
0: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा, नाश्ते में और जूस वगैरह।
1: ये आप बहुत अच्छी बात बताइए आपने।
0: पोषण को लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि तो जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
0: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खासकर तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार होते हैं। त्यौहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी।
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी, हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम, गुड़ और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी। जो गन्ने का रस जब निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है,
0: ओहो
1: उसके बाद गुड़ गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत

0: जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी यानी जिंदगी का लुत्फ उठा
1: जी
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई। तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी
1: जी
0: उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: नहीं, और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ
1: जी
0: सुनाइए
1: मैम।
0: आप।
1: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
1: सडनली
0: बहुत
1: तो याद आ गया वो गा दिया मैडम, कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं, बहुत सुंदर आपकी
1: जी
0: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
1: जी
0: आपने कहा कि आप
1: धन्यवाद
0: संगीत की शिक्षा देती हैं, तो
1: जी जी
0: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, ने कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा

0: है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
1: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
1: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
0: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
1: जी,
0: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बात करने का बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: बहुत
1: हाँ
0: खुशी हो रही है।
1: जी हाँ हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
0: मुझे यह सुनने का बहुत अच्छा लगता है,
1: रेडियो
0: गाने सुनने का।
1: जी
0: और मुझे ना सैटरडे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल ही तो है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
1: जी
0: सलमा दीदी की आवाज भी।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती हैं, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी, और आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं।
0: जी, अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी,
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला।
0: जी, संजोग फिल्म का गीत आपको सुन

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना भानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: बेटा मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ, कपड़े ने सिलती हूँ। मैडम
0: जी, यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के फनकार और बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइडसम।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662, यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं अब विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
3: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरफ देखकर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ आता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है? वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की

कोर्ट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

स्नेहा अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है, मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजाजी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाज़ा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नज़र डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज़्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूँ, रायता दूँ, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फ़ोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ, नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फ़ोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतज़ार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाज़ा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतज़ार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नज़रें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी ज़ोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूँ।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज़्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा

कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताएं स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोवा कर बाहर आती। सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज़्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज़ अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी ज़रूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी ज़रूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी। कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ मैं शक्ति सिंह। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्या सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व्स 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ भी करेंगे। पूर्वोत्तर में सीमा पार से होने वाली कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB की अगरतला क्षेत्रीय इकाई ने लगभग 17,84,00,000 रुपए मूल्य की करीब 22 किलो मेटमेफेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में 2 अलग अलग अभियानों में म्यांमा के एक नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स करूप रसमुवेना से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग की ली चेक्यू से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में पिकलबॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
4: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
3: Vice President C.P. Radhakrishnan has congratulated scientists and engineers of Indian Space Research Organization, ISRO, on the successful launch of the imaging satellite from Sriharikota today. In a social media post, the Vice President said that the successful injection of India's first ever imaging satellite, EOS-05, from the geosynchronous orbit is a significant milestone in the country's space journey. The BRICS Chief Justices Forum is underway in New Delhi from today, bringing together Chief Justices, Presidents of Supreme Court and senior judicial representatives from BRICS member states and partner countries. The Supreme Court of India is hosting this forum. On the opening day, Chief Justice of India Surya Kant will hold bilateral meetings with heads of judicial delegations from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran and Uzbekistan. The meetings will act as a direct interaction and discussions on matters of mutual judicial interest, while further strengthening engagement and cooperation among the participating judiciaries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,282. According to the Nepal police, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan at 359, followed by Nawalparasi East with 218. Two additional deaths occurred while victims were undergoing treatment at hospitals in Kathmandu. Meanwhile, India sent two more aircraft with relief material to the flood-ravaged Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in the affected areas. The External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation, Mahavir Poon. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Italian Prime Minister Giorgia Meloni on becoming the longest continuously serving Prime Minister of Italy's post-war history. In a social media post, Mr. Modi said that this milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian people in her leadership. The Prime Minister emphasized that her friendship has also been instrumental in strengthening the India-Italy special strategic partnership. The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, has been observed across the country with religious fervor today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies, and visit temples. Sweets and other foods associated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. And that is the end of this news bulletin.
0: A एफएमएंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत हैं गैर फिल्मी भजन।

भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं वंदना रैना, आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में। और शुक्रवार की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं फिल्मी फ्राइडे। जी दोस्तों, फ्राइडे का मतलब ही है एंटरटेनमेंट। जब बात युवाओं की हो तो दिल धड़कन और दीवानगी की बात होना लाजमी है। आज कार्यक्रम में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने युवाओं के दिलों को झकझोर दिया, जिसके गीतों ने म्यूजिक चार्ट्स पर राज किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह की। शाहिद कपूर का वो एंग्री यंग मैन लुक कियारा आडवाणी के साथ की और उस पर वो पागलपन वाली मोहब्बत आज सब पर बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ।

जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है फिल्मी फ्राइडे में। और जो गीत अभी अभी आपने सुना वो सीधे दिल को छू जाता है। कबीर सिंह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक पागलपन था। कबीर एक बेहद इंटेलिजेंट सर्जन, लेकिन गुस्से का दूसरा नाम। जब उसे उसका प्यार प्रीति नहीं मिलती तो वह खुद को बर्बादी के रास्ते पर धकेल देता है। और युवाओं को इस फिल्म में क्या पसंद आया? शायद वो अनफिल्टर्डनेस। शाहिद कपूर ने कबीर के रोल में आत्मा डाल दी, लेकिन क्या उनका गुस्सा, उनका टॉक्सिक बिहेवियर सही था? इस बात पर कार्यक्रम में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है उस गीत का जिसने कबीर के दर्द को सीधा हमारे दिलों तक पहुँचाया। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का गीत जिसे आवाज़ दी विशाल मिश्रा ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और दोस्तों, आज है फिल्मी फ्राइडे। फिल्मी फ्राइडे में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कबीर सिंह की। दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो यंगस्टर्स में कबीर सिंह जैसी दाढ़ी बढ़ाना, चश्मा लगाना और बुलेट बाइक चलाना एक ट्रेंड बन गया था। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, आपकी दोस्त होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि कबीर का प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका गुस्सा और खुद को नुकसान पहुँचाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। प्यार में अगर दिल टूट जाए तो क्या ज़िंदगी खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और असली कबीर सिंह वही है जो मुश्किलों से लड़कर वापिस खड़ा होता है। और ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें ये समझाती भी है कि अगर प्यार में दिल टूट जाए तो हमें बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेशन में या फिर अंधकार में डुबोना नहीं है, बल्कि खुद हालात से लड़कर वापस जिंदगी की इस जंग को जीतना है। और चलिए माहौल को बनाते हैं थोड़ा सा रोमांटिक, और इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी को सुनवाते हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, फिल्म कबीर सिंह की सफलता के पीछे उसके गीत संगीत का बहुत बड़ा हाथ था और इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिथुन, अमाल मलिक, विशाल मिश्रा, सचेत परंपरा और अखिल सचदेवा। इस फिल्म का निर्देशन किया वीएस रेड्डी ने और गीत लिखे इरशाद कामिल, कुमार और मिथुन ने।

और दोस्तों, इस फिल्म में कबीर के वफादार दोस्त शिवा को हम कैसे भूल सकते हैं। हर युवा को जिंदगी में एक ऐसा ही दोस्त चाहिए जो मुश्किल की घड़ी में भी साथ ना छोड़े। कबीर और शिवा की दोस्ती हमें यही सिखाती है कि दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, सच्चा दोस्त हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता है।

तो दोस्तों, आज की फिल्म कबीर सिंह से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार में पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह जुनून खुद को या दूसरों को बर्बाद करने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसे खुलकर जिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। और अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है, और अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति। और आपको ये भी बता दें कि आज के युवा मंच के संघ के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और तकनीकी सहयोग हमें दिया सुनील कुमार ने। और अब मुझे दीजिए अनुमति। बाय बाय, टेक केयर।

युवा मंच कार्यक्रम श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुरमई सांझ ही कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर और 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा गराइंदियां का। कार्यक्रम खेतीबाड़ी प्रसारित किया जाएगा शाम 7:10 पर और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सब्र सुनिएगा रात 8:00। रात 8:30 का समय है देशभक्ति गीतों का। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म चरस के कुछ नगमे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:45 पर आकाशवाणी शिमला से। समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:30 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम जिसका नाम है कारवां सुरों का। रात्रि 10:00 सुनिएगा बॉलीवुड बीट्स और रात 10:30 का समय है पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया थोड़ा सा इंतजार करिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 सड़क सुरक्षा व रखरखाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क अवसंरचना की तत्काल बहाली का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मुरम्मत का खर्च और जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सड़क किनारे निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। शिमला के गंज बाजार स्थित ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। इस दौरान लोग कान्हा के भजनों पर झूम उठे और भक्ति रस में सराबोर होकर नृत्य किया। श्री सनातन धर्म सभा शिमला के प्रचार मंत्री सुमन पाल दत्ता ने बताया कि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
1: पूरे शहर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। 3-4 बार 3 दिन मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हमने हुशियारपुर से, यमुनानगर से और बिलासपुर से बहुत सारी जगह से सब महात्मा बुलाए हैं। लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हैं और अब

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट में राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन बेनकाब हुआ है और इस रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है। आज शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्व व राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार ने बिना बजट के ही 438 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टेंडरिंग और टैक्स वसूली सहित अन्य कई क्षेत्रों में राज्य सरकार की नाकामी सामने आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर कदम से कुछ गिने चुने लोगों को लाभ हो रहा है जबकि प्रदेश लगातार नुकसान में जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कैन उर्वरक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है जिसमें सेब उत्पादकों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। रोहित ठाकुर ने बताया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन उर्वरक उपलब्ध न होने से सेब उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग से हर वर्ष करीब 6000 करोड़ रुपए का योगदान होता है और सेब बागीचों के लिए कैन उर्वरक एक भरोसेमंद व किफायती स्रोत है। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से उर्वरक निर्माताओं को कैन के उत्पादन और उसकी उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने ये मामला जेपी नड्डा के साथ प्रमुखता से उठाया था। अनुराग ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य व दवा आपूर्ति श्रृंखला में हिमाचल की भूमिका अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं और इनका वार्षिक कारोबार 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

0: युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने और नशे से दूर रखने के उद्देश्य से नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में सिरमौर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 500 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है। धाटीधार क्रिकेट क्लब के सचिव मोहित ठाकुर ने आज नाहन में बताया कि ये क्रिकेट लीग 8 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को हैं। श्रोतावली जी सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है RD बर्मन ने, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गीत को संगीतबद्ध दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरमई सांझ ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है मेरे सनम और इस गीत के संगीतकार हैं ओपी नैयर।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में तीसरी मंजिल फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर डी वर्मन।

सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राईंदियां सुनने वाले सारे किसान कन्नै बागवान भाइयां जो जोधा राम दी राम राम किसान साथी अज टियाली विच मेरे कन्नै है केसरू
1: जोधा राम जी तुहानू भी राम राम कन्नै कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान भाई बहनों जो भी केसरो दी दो हाथ जोड़ी करी हाँ, राम राम
0: करे सुगी सुगी जन्माष्टमी दी बड़ियां बड़ियां शुभकामनाएं
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरा सारे किसान भाइयों बच्चे कने जो भी कार्यक्रम सुना दे सबनों जरा आशीर्वाद मिले कने दिखा अहां दे ग्राएं विच जरा जन्माष्टमी का किस तरीके ने जरा उत्सव मनाया जाता है ना जी
1: बिल्कुल
0: अहां दे ग्राएं विच जरा मंदिर है ना
1: जी
0: टियाले थले जो बड़ा मंदिर है इतों तो भाई जनानियां जरा दिन बैठी आई करी है ना बराती भी कित्या हा कने बराती वाली खीर भी मिला दी इतों खाने है ना जी,
1: जी, जी।
0: कने सोगी सोगी जरा इतों भजन कीर्तन जरा दिन तो चलिया कने राती राती जियां कि हुण रात बजनी है तीं दियां भजन कीर्तन जरा सानू ज्यादा सुनने जो मिलना है
1: बिल्कुल जोधा राम जी तुम बिल्कुल ठीक गल गलाई कि ग्राएं च क्या हर जगह जितू भी श्री कृष्ण भगवान जी दे मंदिर हैं तो इतों च सारे ने जाकर हाजिरी लगाई है और अज रौनक मेला जरा इतों लग्या है कने बड़ा ही खुशी का माहौल जरा बने है कने किसान भाइयों दिखा कम कार जड़े चले रहते हैं लेकिन रौनक मेला जरा भी जरूरी है और ऐसे तीज त्यौहार जलू आते हैं तो हाँ जाकर बोलते ना कि परमात्मा के चरणों भी हाजिरी लगाई होंगे कने काम कार भी साढ़ा ठीक चले और अहाँ भी ठीक ठाक रहन ऐसी ही अहाँ कामना भी करते हैं तो अज जरूर सारे की जी मनोकामना है से जरूर पूरी होनी है ऐसी अहाँ सोच रखते हैं है ना जी
0: कने दिखा हूँ जरा कमे की गल कर लेंगे है ना जी तो जानकारी जरा पहले दे लेंगे क्योंकि जानकारी देना भी बड़ी जरूरी होंगी है ना जी
1: बिल्कुल जी
0: तो आज की हमारी जानकारी है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में
1: जी जी
0: है ना जी तो थोड़े वाल जरा जानकारियां का पिटारू है
1: जी जी बिल्कुल जोधा राम जी दिखा टियाले पर आए करिए हाँ जानकारियां तो लेकर ही आते ही हैं कने किसान भाई साढ़े जानते हैं कि ये जी अभियान है इन्होंने बारे हाँ आए दिन जरा गल करते रहते हैं ताकि साढ़े जोड़े किसान हैं से जागरूक रहन कने तिना जो अगर जानकारी ना हो तो तिना जो जानकारी मिलती रहे तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जोड़ा है भारत च कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 च शुरू किया गया था
0: जी।
1: एक परिवर्तनकारी कृषि योजना है कने जड़ा है सह कार्यक्रम जड़ा है देश के मेहनती किसानों ताई लाभकारी है
0: जी।
1: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों ताई आशा की एक किरण है
0: जी।
1: और किसान साथियों दिखा इसा योजना जो लोगों के सामने आने वाली जड़ी आर्थिक चुनौतियां तिना जो घट करने ताई तैयार किया गया है क्योंकि खेतीबाड़ी के काम ऐसे होंगे जिन्हें कई बार जड़ा है कई सारी आर्थिक चुनौतियां जड़ी हैं सांझो दिखने जो मिली आंदी हैं
0: जी बिल्कुल
1: ता किसाना जो उनादी उपज ताई उचित मूल्य जड़ा ऐसा दिलवाया जांदा है इस योजना दे अंतर्गत इस अभियान दे अंतर्गत
0: हाँ जी
1: कने सोगी ही ये जड़ी ऐसा किसाना दी आय संरक्षण दी दिशा च भी भारत सरकार द्वारा असाधारण कदम है जिसने किसाना दे कल्याण च काफी हद तक सहूलियत होने दी आशा भी होंदी है कने दिखा सरकार जड़ा है से उत्पादन लागत दा डेढ़ गुना तय करने दे सिद्धांत पर चलदे हुए खरीफ फसलां जिन्हें

0: जिकी धान होंगे ज्वार बाजरा रागी मक्का कने तूर कने सोगी ही अरहर दे न्यूनतम समर्थन मूल्य च भी पहले ही वृद्धि करी चुकी है। ये उम्मीद की जाती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य च वृद्धि की बदौलत राज्य सरकार के सहयोग ने खरीद व्यवस्था जो काफ़ी बढ़ावा मिलना है।
1: हाँ जी, कने दिखा ये जो आय संरक्षण अभियान है ना किसान साथी, इस विच बड़ी सारी योजना जरा से चलिया ने, कने सारिया योजना विच जड़ा है सै एक ही चीज़ है कि अहां दे किसान भाइयों की आय जड़ा है सै बधे, कने तिना जो कमाने दे नए नए तरीके मिलन, कने सोगी सोगी इस सही योजना का मुख्य उद्देश्य भी है कि किसानों जो उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना, कोई भी फसल हाँ किसान भाई बनते हैं तो तिना जो सही मूल्य जरा से मिलना टाइमे पर जरा सा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों तक पहुँचाना, ताकि किसान भाइयों पता लगे कि यह जरा असा फसल है सै असा जरा सा इसते घट रेटे पर जरा सा नहीं बेचनी है, इसके उपर उपर ही जरा सा बेचनी है, चाहे दलहन है चाहे तिलहन है चाहे अहाँ की या मोटे अनाज दिन फसल ने या तो फिर कोई अहाँ की मुख्य फसल है चाहे गेहूँ है या मक्का है या धान है, तो इस तरीके ने अहाँ के किसान साथी जरा सा इन योजना ने जुड़ी कर जरा सा अपनी आय जो बढ़ाई सकते हैं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: कने दिखा जन्माष्टमी का बेला है, कने सारे ग्राएं विच जड़ा ऐसा भजन चल रहे ना
0: जी जी,
1: तो अस भी चाहते कि अहां दे टियाले विच जड़ा ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण भजन।
0: बिल्कुल, सांझो भी मौका मिलता है कि हाँ टियाले पर ऐसा रौनक मेला लगाइए और जरूर अपनी भी हाजिरी यहाँ भी लगानी है ना जी।
1: तो आवा सुन दे ए लोक भजन
0: जी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: तो किसान साथी दिखा असा जड़ा सा शुरुआत करीती है इस लोक भजन दे सोगी सोगी कहना कार्यक्रम चलिया है थोड़ा मौजा कराई दी कहना मौजा जड़ा सा कराई चाहिए लगती है ना।
2: बिल्कुल कहना जो राम जी तुम्हारा सच्ची दिल खुश कर दिता और आज दे इस अच्छे मौके पर शुभ मौके पर भजन सुनी के जड़ा सा नचने का भी दिल।
1: बिल्कुल जी कहना दिखा नचने गाने का ही वेला कहना सारे मंदिर तो दिखा लोग इं गा कहना इं नचा दे कहना बरखा भी जरा सा ऊपरी इलाके बड़ी रही है कहना बुले इलाकों की खबर अली संजू आई नहीं है लेकिन इन्होंने ऊपरी इलाकों में कहना मध्य पर्वती इलाके में जरा सा बरखा रही है कहना जन्माष्टमी की धड़ी बरखा नहीं हुआ तो ऐसा हो भी नहीं सकता है
2: ना
1: जी। कहना जन्माष्टमी में कुछ खास गल्लां भी हैं कि दिखा कि जन्माष्टमी की धड़ी जरा सा मन में इस यात्रा भी जरा सा चली पौंदी जन्माष्टमी का नौन होंदा ना जी। कहना इस कई जरा सा बड़ी मचाई भी आए न कहना जरा सा यात्रा और भी होनी है गा कहना जन्माष्टमी में एक होर जरा ऐसा मान्यता है कि बोलते भगवान भोले शंकर जरा ना सह जरा सा जितने भी जीव जंतु होंगे जिया जहरीले होंगे जी बिच्छू हुई या सर्प हुई है ना जी तो ना सारे जो जरा सा अपनी झोलिए पाई लेंगे
2: पाई
1: लेते ऐसी मान्यता कहीं इसके बाद जरा ऐसा दिखने चु नहीं मिलते कहना बड़े घट जरा ऐसा दिखने मिलते कहना बाहर निकलते क्योंकि बरसाती तो देखे होना कि हाँ घर में भी कई बार कोई सांप या कोई बिच्छू जरा ऐसा आ जाते
2: हैं अंदर है
1: ना
2: जी
1: लेकिन हूँ जरा ऐसा मतलब जन्माष्टमी बाद भी थोड़े घटी जाने तो जन्माष्टमी का एक बड़ा महोत्सव रहा कहना बड़ा बड़ी पाल जरा सा लोगों रही क्योंकि बड़ा बड़ा त्यौहार जरा सा मन जाता है ना
2: जी
1: कहना हूँ अगली गलबात जरा सा तो हम जानकारियां दा पिटारा सुमाले
2: बिल्कुल जोदा राम जी दिखा वैसे तो दिखा अज रौनक लगी इन तो ध्यान सारा रौनक पास ही है पर बोलते ना काम कार भी होते रहना चाहिए ना और काम की भी गल जी हाँ टियाले पर जरूर करनी है तो दिखा जोदा राम जी अजकल बरखा तुम दिखा दे थोड़ी जी घटी आ दी दिन एक बारी जी इसे बरखा हो चाहे सवेरे हो चाहे संझा हो पर जलू से होवा दी ना तो बड़ी ही बुरी तरह होवा दी है कहीं अज भी दिखा इतू हाँ अपने टियाले पर भी थोड़ी देर पहले घंटे दो घंटे पहले खरी बरखा दिखी है तो बरखा के इस टाइम हाँ ये गल गलाना चाहेंगे कि भाई थोड़े जो खेत हैं या जी थोड़ियाँ क्यारियां तिन्हों का खास ख्याल रखा सब तो जरूरी होंगे जल निकासी अगर पौधों के आसे पासे पानी कई घंटे तक या कई दिन तक जमा रहेगा तो जड़ा

0: जो नुकसान हो सकता है।
1: जी
0: तो जरूरत हो तो किसान साथी दिखा छोटी जी नाली जड़ा बनाई करी जो ज़्यादा पानी है तीसियों निकालने का एक साधन जड़ा से जरूर बनाई लेना चाहिए है। वैसे तो खैर साढ़े किसान भाई इन्हें गल्लां दा खास ख्याल रखते ही हैं,
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: जिन्हें वाले बड़ी स्तर पर जमीन नहीं है छोटी छोटी क्यारियां होंदियां तिना जो भी जाकर दिखना चाहिए। हाँ बड़े सारे पेड़ पौधे अजकल लगाते हैं, बरसाती का समय चल रहा है और ऐसे पौधे अजकल लगाई जाए तो भी बोलते सफल हो जाते, पर फिर भी पानी ज़्यादा ना हो तीसरा भी ध्यान रखना
1: हाँ, तो
0: चाहिए
1: अजकल
0: है।
1: भी दिखा कि घर जरा सा अपने घर च गमले रखे ना फुलों
0: जी
1: के, सब फुलों के गमले जरा सा अगर गलतियां ने बाहर रही आते आंगने में रही आते तो
0: बिल्कुल
1: पानी जी
0: बिल्कुल
1: तो इकट्ठा हो जाता क्या सब ही सड़ी जाते। तो
0: जी
1: सानू जरा सा जिन्हें फुलों के बगीचे लगे हुए जिन्हें औषधियों पौधे के बगीचे लगे हुए तिन्हों चू भी जरा सा ये दिखने वाली गल है कि सब अपने खेतों का दौरा कर, बरखा बच्च भी जाए करके कुछ पानी का डिब्बर तो नहीं लगी या कुछ पानी तो
0: बिल्कुल
1: नहीं इकट्ठा होता, तो तिथु जरा सा जरा सही बंदोबस्त होना चाहिए पानी जो कड़ने का, ताकि असं दे पौधे दे जड़ा ना तिन्हें दी जड़ा जड़ा सह नी गलन।
0: जी बिल्कुल कहने जो राम जी दिखा जी तो हम गलाया कि गमले भी यहाँ लगाए होंगे घरे पौधे लगाए होंगे फुलां दे लगाए होंगे कई तरह के पौधे यहाँ लगाते हैं, पर चलो बरखा होंगी इसके बाद क्या होंगे कि इस गमले दी मिट्टी जड़ी इसे बिल्कुल ढीली पी जाती मतलब कि बिल्कुल ताज़ी हो जाती है। तो इस टाइम अह सोचते हैं कि चलो गिली मिट्टी है इस कुदाल चलाई देंगे थोड़ा देर थोड़ा गुडाई कर लेंगे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए
1: हाँ जी
0: क्योंकि जड़ी जड़ है ना तीना जो उस टाइम नुकसान पुजने का डर होंगे, तो जमीन
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी
0: थोड़ा देर सूखने के बाद ही तो हाँ इसकी गुडाई करी सकते
1: करना
0: हैं।
1: चाहिए कि ना दिखा अली भी समय है कहने जरा भी औषधि पौधे लगाना चाहते बगीचा लगाना चाहते तो अली भी जरा समय है कहने लगाई सकते हैं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अलावा दिखा कीट कने बीमारियों पर भी नज़र रखना चाहिए, बरखा के बाद पत्तियां पर धब्बे नज़र आते हैं सड़न नज़र आती है और पीलापन भी नज़र आता है, तो अगर कीट भी दिखाई देते हैं और इसकी शुरुआत हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और समस्या ज़्यादा हुई है तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग से सलाह ले लेना चाहिए और उन्होंने सलाह के मुताबिक तो इसकी रोकथाम जो ऐसे करी सकते हैं।
1: हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये
1: जी
0: सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गल्लां हैं जो कि अगर अह ध्यान रखिए तो साड़ी मेहनत जी इसे पानी च नहीं रुढ़ी सकती और अह अपने पौद्या की सुरक्षा करी सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं।
1: हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: भाई
1: जी
0: इन्हें गल्लां का खास ख्याल रखा कने अपने जड़े पेड़ पौधे तुह लगाए उन तिना जो बिल्कुल बोलते हैं निक्के आने पालना पौधा तीन तिना जो पालना पौधा तो तिना का खास ख्याल रखा
1: बिल्कुल जी कन्ने दिखा बड़ी अच्छी गल तुहां दसी है ना जी,
0: जी।
1: कन्ने हुन जेड़ा है सा फिर ते बेला होया है एक लोक गीत,
0: लोकगीता
1: लेकिन उससे पहले सुन लेंगे फिर एक संदेश।
0: संदेश
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: तो दिखा असा सुनिया लोकगीत है ना जी,
3: जी
2: कने लोकगीत वैसे तो ब्याह शादी में गाया जाता, कने ब्याह के टाइम में गाया जाता ना,
3: बिल्कुल,
2: लेकिन ये ब्यागड़ा था, लेकिन हसन जेड़ा मैं सुनिया कने इस लोकगीते ते ही जेड़ा ब्याह कने शादियों की शुरुआत होंगी। असन की परंपरा है, कने असन एक रीति रिवाज है, कने एक और रीति रिवाज जेड़ा जन्माष्टमी में चली पी अजकल।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अजकल दिखा जेड़े स्कूल हैं या कुछ भी चली जाए तो है ना, तो अजकल जेड़ा ऐसे है बच्चे जो जरूर

0: ऐसे ऐसे जिहड़े प्रोग्राम किए जाते जी आज जन्माष्टमी है तो बड़े सारे जोधा राम जी मैं भी देखे भाई निक्किया ने ना छोटे छोटे कृष्ण भगवान बनाया कुसी राधा बनाया था तो देखी के मन खुश हो जाता और बच्चों जो जरूर अपनी संस्कृति कने जोड़ना चाहिए है और ऐसी कथा सुनाना चाहिए जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है कृष्ण भगवान कौन थे क्योंकि बच्चों से एक सवाल पूछने की ना एक लालसा होंगी है
1: हाँ
0: सज्जन
1: जी
0: जरूर पूछते हैं कि सांझो ये क्या पाया है कजो पाया है कृष्ण भगवान कौन थे तो भाई अहाँ ये बोलना चाहेंगे कि भाई अच्छा लगता चलो साढ़े निक्याने जड़े न से अहाँ तिना जो तैयार करके भेज दें और आज तक खैर छुट्टी थी पर पिछले दिन ही स्कूलों से जड़े ऐसे काफ़ी सारे कार्यक्रम किए गए जिस कि कृष्ण जन्माष्टमी जो भी तिना ने दर्शाया और बच्चों से भी एक लालसा रहती है बच्चों जरूर इस बारे में दसना
1: हाँ
0: चाहिए
1: कन्नै बड़े सारे जरा सा बच्चे जरा स्कूलें जाते से मंदिरें गए अपने मम्मी पापे कन्नै
0: जी जी
1: कन्नै जरूर मंदिरें भी जरा सा रौनक रही हैं
0: बिल्कुल
1: तो असा इन्हें रौनक भी बिल्कुल भी जरा रुकना नहीं है
0: जी
1: कन्नै
0: जी
1: फिर ते असा सुनना एक होर लोगी
0: जी।

0: किसान साथियों का दिखा इस लोक भजन करने जड़ा ऐसे कार्यक्रम का समय भी इतों संपन्न हुआ था। जाने से पहले तो जो दस दिए कि आज तकनीकी सहयोग रहा सुनील शर्मा और आंदा और कार्यक्रम प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह कने हूँ अहाँ दोनों जो दे अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां गराइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास

0: के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाइयों जो भैन जो बच्चों जो बुढ़े जो जड़ा भी कार्यक्रम सुना दे तेना जो जोधा राम जी राम राम कहना सोगी ही भाई अजकल मेरे सोगी नटियाले विच
1: केसरो
0: केसरो जी
1: ता जोधा राम जी तो अंजू भी राम राम एक बारी फिरी ते और जेड़े साढ़े किसान भाई बहन सांजू कने जुड़े हुए टियाले दे माध्यम ने तीन सारे जो भी एक बारी फिरी ते राम राम
0: बिल्कुल जी कहना जन्माष्टमी दिया फिर ते बड़ी बड़ी शुभकामनाएं है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और रौनक जरा सग्राएं च लगी है मंदिर च रौनक लगी है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कहना मारे जरा युवा नौजवान साथी जना कि समूह बने मंडल बने हैं
1: बिल्कुल
0: सह तीन चार दिन पहले जरा से डटी हुई मंदिर की साफ सफाई बच्चे कहना इतना पूरा बंदोबस्त किया है ना जी। कहना जितने भी जरा समूह बनते ना जिया इन्हों का युवा मंडल बने बच्चों का तो जरा सह आपू फंड इकट्ठा करते कहना आपू जरा मंदिर जो जरा सजाते कहना दिखा ये सब दिखी करी बड़ा अच्छा लगता चलू असं भी ये काम करते हे तो सू भी जरा प्रोत्साहन मिलता है ना जी। कहना अली तक दिखा ये प्रथा चली हुआ कहना अली भी जरा मंदिर में इस तरीके ने जरा कमकार होते कहना कई दानी सज्जन भी होंगे
1: जी जी
0: लंगर
1: जी
0: भी लगाते जी खीरा का लंगर भी लगे हथा दिन है कोई है ना जी फल फ्रूट भी दिया हैं व्रत वाले कहना इस तरीके ने जो ग्राएं च दिखा रौनक लगी है ना जी।
1: बिल्कुल दिखा युवा की तुह गल करा दे पर दिखा अजकल जो निके आने इन्ह तिना चो भी बड़ा उत्साह हों सहता नोए नोए कपड़े पाने वैसे खुश रहते हैं कहने चलो अहम बोलना ना कि भाई कृष्ण भगवान का रूप तुह धारण करना मतलब ऐसी पोशाक पानी है तो सह बड़े बड़ी खुश होंगे भी बंसरी भी हथे पकड़ाई दिया मुकुट लगाई दिया और सच्ची तिना चो दिखी कि ऐसा लगता है कि साक्षात जो कृष्ण भगवान का जो रूप है सह धरती पर आई है तो अज ऐसे बड़े सारे जोड़े सो नज़ारे दिखने जो मिला दे और मंदिर जितियाँ तुह बोला दे रौनक लगी हैं और संजा तो यह वेला है क्या बोलते जोधा राम जी तो दिखा रौनक तो हाँ टियाले के माध्यम कने भी लगा जलू ग्राएं च ऐसी रौनक लगदी ना तो ध्यान साढ़ा ग्राएं पासे रहा कने मिंजो भी इतों तक भी भजन कीर्तन की आवाज़ हुआ करती है मंदिर च बड़ा बुरी भजन कीर्तन लगे तो जरूर टियाले के बाद मैं भी हाजरी लगानी क्योंकि अज 12 बजे तक जो मंदिर च रौनक
0: लगी रहनी है कहते दिखा हूँ जानकारी तो भी बेला होया ना जी तो जानकारियों में जो सारे से पहले गल कर लेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में
1: जी तो दिखा जो राम जी स्वच्छ भारत की गल जी हाँ करा करते हैं और वैसे भी बोलते हैं कि जिस घर च आंगन साफ होए तेतु खुशियां भी मुस्कुरादियां है ना जी,
0: जी।
1: कने घर आंगन जरा साफ सुथरा सारे जो अच्छा लगता है और घरे दे बाहर अगर कूड़ा पे होए नालियां गंदियां होन नालियां जड़ी इनसे ब्लॉक हो कने प्लास्टिक कुछ ना कुछ सो मिली आए तो दिखने च अच्छा नहीं लगता है तो स्वच्छता की गल जी हाँ जरूर करनी है क्योंकि दिखा वैसे तो अजकल हर घरे जैसे कूड़ा कचरा लैने वास्ते जड़े भाई बहन जड़े ओआ करते हैं पर इसके बाद भी अहाँ कई बार दिखते हैं कि लोग जड़े क्या करते कि अपने कूड़े चो किसी लिफाफे च या बैग च पाई करी तेतु रखी आते हैं बेशक सह तेतु पई रहेगा तीसरी चुकने वास्ते कोई होगा नहीं होगा पर जड़े बोलते ना आवारा पशु होंगे या फिर कुत्ते ही होंगे तो तिना जो सह कूड़ा जड़ा खिलारी देंगे तो ये सारी चीज़ा जी सो जरूर सोचनी चाहिए कि अपना जोड़ा ग्रां है अपना जोड़ा कस्बा है या अपना जोड़ा जिला है साफ सुथरा कि रही सकता है अपनी जी साढ़े जो कर्तव्य हैं तिना जो सो याद रखना चाहिए
0: जी। बिल्कुल जी दिखा स्वच्छ भारत अभियान जोड़ा ना सब तक काफ़ी साल चलिया
1: जी
0: है 2000 के पहले तो चलिया हाँ लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जोड़ा है ना सर 2 अक्टूबर 2014 जो जैसे प्रधानमंत्री होर ने जरा चलिया
1: बिल्कुल
0: कहना महात्मा गांधी की जयंती से जरा सा चलिया अज तक चलिया कहते इससे पहले जलू संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक था संपूर्ण स्वच्छता अभियान उससे पहले तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान जलू चलिया कि इस ये देखा जाता कि जरा पीने वाला पानी है ना तो साफ करना
1: बिल्कुल
0: लेकिन पीने वाले पानी सब से ज्यादा दिक्कत क्या होंगी कि ग्रा पानी जो होंगे था सह खड्डा तो होंगे था कहना बड़े बड़े नदियां या दराएं तो होंगे था वो नदियां तो थल आए कि बन दी उपर इतने छोटे छोटे दराया होंगे ता ही सह नदियां जाके मिलते हैं कहना उपर रेंदे हे लोग कहना सह ग्राएं रेंदे हे कहना ग्राएं एक दिक्कत होंगी कि ये जरा सह शौचालय नहीं होंगे था
1: इतने
0: सब वजह से जरा सह पानी गंदा होंगे रहा था कहना पीने का पानी बड़ा खराब होंगे था तो स्व जरा पानी के स्वच्छ करने के पहले जरा सह संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलेगा ताकि लोगों को यह जागरूक किया जाए कि घर शौचालय हो दिखा हूँ जरा धीरे धीरे लोग जागरूक हुए ना
1: बिल्कुल
0: हूँ जरा ऐसा पानी भी स्वच्छ होया कहना संपूर्ण स्वच्छता अभियान लोग जुड़े ने कहना हर घर में जरा सा शौचालय बने सरकार ने स्कीम चलाइया कहना हर गरीब तो गरीब घर में जरा शौचालय बनया कहना जो कि लोगों जो मकाने बनाने वास्ते पैसा मिलता था ना इस जरा जरूरी

0: ताकि हर घर में जरा सा इस करना है, शौचालय भी बनना है, कहते इससे पैसे भी जरा से मिलते थे, है ना जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इस तरीके ने जरा सा लोग भी जागरूक हुए, अपनी जिम्मेवारी समझी, कहना संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो कामयाब बनाया। लेकिन
1: बिल्कुल
0: हुण जरा ऐसा इसके बाद कई सारी चीज़ें होर सामने आ दी, तो
1: जी
0: इससे यह होता कि असं तो जरा सा पानी ऐसा अली भी साफ नहीं है,
1: जी
0: सोचते तो ऐसा पानी साफ करीता, लेकिन अली भी जरा सा हाँ घर का कूड़ा करकट प्लास्टिक जरा ऐसा है अली भी यहाँ नालियों से करना खड्डा जरा सा फेंका दे जाए करी, है
1: बिल्कुल
0: ना जी।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरीके ने जरा ऐसा है संपूर्ण स्वच्छता अभियान जरा ऐसा कामयाब तल ही होना, जल्द असा लोग जरा सा पारिवारिक स्तर पर जरा सा कम करना शुरू कर गए, कहना परिवार का कूड़ा जरा ऐसा है असा अलग अलग तरीके ने रखने, कहना जरा पंचायत है ना, पंचायत ने भी जरा सा बड़े सारे लोग जरा सा संपूर्ण स्वच्छता अभियान है जोड़े ना, कहना कर करते आई करी जरा सा कूड़ा जरा सा जमा कर दें, इस विच तो हाँ ये करना है कि अपना गिल्ला कूड़ा कहना सूखा कूड़ा जरा से दोनों अलग अलग कर लेने,
1: बिल्कुल जी
0: ताकि तेना
1: बिल्कुल
0: जो सह रहा है रिसाइकल करने वास्ते बड़ा सही रहता, दोबारा से यूज करने वास्ते तेना जो बिल्कुल सही रहता।
1: जी जी कने
0: तो इस
1: दिखा
0: हाँ जी
1: जागरूकता जड़ी ऐसे फैली चुकी हुई है। कने बहुत सारे युवा वर्ग जड़े हैं तिना ने अपना एक समूह बनाए हुए हैं, अपने समूह जो लेकर ही चलते हैं। दिने का 1 घंटा या 2 घंटा जो भी समय तिना वाल हों अपने इलाके की साफ सफाई च लगाते हैं। बहुत सारे जड़े पंच प्रधान चुने गए हैं, सह भी अपने एरिया की जी सफाई करा करते हैं। तो साढ़ा सारे का ही कर्तव्य है कि साफ सुथरा अपना पर्यावरण बना।
0: बिल्कुल जी, तां दिक्खा जन्माष्टमी का बेला है
1: जी
0: कहना, ओ सुनते ये लोग भजन।
1: जी

0: किसान साथियों दिखा संजा दे बेले तुहां सुने प्यारा दिया लोक गीत।
1: हाँ जी
0: और जरूर तुहां बोल देना कि आज का दिन जड़ा है वैसे भी बड़ा अच्छा है और जेड़े तो मंदिर नहीं जाई सकते जेड़े साढ़े बड़े बुजुर्ग हैं घरे बैठे हो कने टियाले के माध्यम ने ही ना लोग भजना जो सुना देन लोग गीतां जो सुना देन सह ते तू बैठी करी ही बोल देना कि अपनी हाजिरी लगाई सकते हैं। तो भाई जो राम जी होना अगे बढ़ना है कने किसान भाइयों कने गलबात करनी है थोड़ी
1: जी,
0: दी कि
1: तो आओ सुन दे जानकारी कने इसके
0: जी
1: बाद जड़ा सा हाँ अपनी गलबात कर गया ना
0: जी
1: जी।
0: जी
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच तुहां जो तो पता है कि हर दिन अहां दा प्रयास रहंदा कि नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। उसी कड़ी विच मिंजो मौका मिला कने मैं गया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र दा एक धारकंडी इलाका है तो उत्थों एक मछली पालन दा जिहड़ा काम करा करदे हन ट्राउट मछली पालदे हन इन्हां कन्नै करदे हन गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा
3: जी। नाम मेरा नाम प्यारे लाल जी।
2: प्यारे लाल
3: जी।
2: कने तुहां दे ग्राए दा की नाम है?
3: बलेड।
2: ट्राउट मछली पालन दा काम करा करदे
3: जी, जी, जी,
2: जी। प्यारे लाल जी कदों ते करा दे काम?
3: सर मैं 2017 से।
2: तो यानी कि काफी टाइम तो जो मछली पाल दे हुई है ना?
3: 8-9 साल हो गए।
2: अच्छा, तो इस वेले जड़ा तो हाँ फार्म बनाया कितना बड़ा फार्म है?
3: फार्म ये तो 4 रेस पे है इसमें। 4 रेस पे।
2: अच्छा,
3: बोलते इसको एक रेस एक रेस पे बोलते इसको।
2: हाँ जी,
3: पर 4 यूनिट है ये।
2: 4 यूनिट है।
3: चार और
2: एक के चार खाने ना।
3: हाँ जी जी।
2: तो जिया एक ट्राउट मछली तो हाँ पाली हुआ तो हाँ इससे पहले जिया कुछ सिखलाई वगैरह भी लेगी जिया मछली पालन पालनी है?
3: नहीं, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देते हैं।
2: अच्छा,
3: डिपार्टमेंट जो मछली मत्स्य पालन विभाग है ना।
2: हाँ जी,
3: ट्रेनिंग दिंदा बेसिकल ट्रेनिंग जो होती।
2: हाँ जी,
3: बाकी तो अपना एक्सपीरियंस है।
2: हाँ जी,
3: फिर कुछ फार्म में शेयर कर लियो।
2: हाँ,
3: जो रीडिंग फार्म है उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहो।
2: हाँ जी,
3: वहाँ से जानकारी मिलती रहती है।
2: अच्छा, इसके बाद गल करते हैं जी हाँ जल तो हाँ फार्म बनाया हा था कितना के समय इसी फार्म में बनाने लगी या कने क्या विभाग द्वारा कोई अनुदान वगैरह?
3: नहीं, विभाग द्वारा अनुदान भी मिला। समय तो चलो भाई जितने ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर जिंदा की उस टाइम भी बनाया मैं 2017 स्टार्ट किया जरा एक 15x2 वाला फार्म है।
2: हाँ जी,
3: उसकी जी मतलब कीमत ही उस टाइम 1,00,000 रुपये थी अनुमानित राशि।
2: अच्छा,
3: उस पर सांझो गवर्नमेंट ने देता 20,000 सब्सिडी।
2: अच्छा,
3: एक फार्म पर। और उसके ऊपर सांझो इनपुट मतलब पालने वास्ते 27,000 लग देता।
2: अच्छा,
3: एक यूनिट पर।
2: हाँ जी,
3: ठीक है। उसके बाद फिर अहां दूजे यूनिट बनाए।
2: हाँ जी,
3: 17x15x2x1.5 था उसकी कॉस्ट थी उस टाइम की 2,00,000 दोबारा। उस पर सब्सिडी मिली सांझो 40%।
2: अच्छा,
3: तो 2,80,000 रुपये हुई।
2: हाँ जी,
3: और प्लस 1,00,000 रुपये जो मतलब मिला इनपुट पालने वास्ते मिला।
2: जी गल करते हैं ट्राउट मछली का जो बीज है।
3: जी जी,
2: बीज कुछ लेंदे तो हाँ
3: बीज हाँ पहले सरकारी फार्म दे रोड दे लेंदे हे पतली कुल दे लेंदे हे बटाड़ लेंदे हे पर उसके बाद फिर सोचा चलो नियर वैसे जो इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम।
2: हाँ,
3: नए फार्मर थे कॉन्टैक्ट नहीं थे सांझो बड़े अच्छे फार्मर मिले जोगिंदर नगर।
2: हाँ जी,
3: उन्होंने संपर्क च आया था उन्होंने सांझो पहले FOR इतने पुजाने की कोशिश की 4-5 साल इतने पुजाते रहे
2: जी।
3: फिर अस उसते भी जाके आपू लिया रहे उसका रिजल्ट जो मुझे बाकी सरकारी फार्मा से ज्यादा अच्छा रहा मुझे।
2: अच्छा,
3: मतलब उससे मोर्टैलिटी भी घट रही और ग्रोथ भी रेट अच्छा रहा
2: जी।
3: दूसरी गल फीड भी जरा हुई है मार्केट का।
2: हाँ जी,
3: तो फीड भी एक अच्छी कंपनी की हमने खोलना स्टार्ट की।
2: अच्छा,
3: कि सारा उत्पाद तो बहुत बढ़िया रहना शुरू हुई है।
2: अच्छा,
3: इनकम का सोर्स भी मतलब इनकम भी साड़ी बढ़ना लग पी।
2: हाँ जी,
3: अच्छा। वो फायदा हम जो रहा उसका मेन
2: जी। नहीं, बीज है दा, इदा क्या भाव मिलता नहीं है कुछ जी?
3: बीज ज्यादा है बीज हो ना अंडा भी इसका मिल जा मिल जाना समझो।
2: हाँ जी,
3: अंडे का समझो प्रोसेस लंबा पाउंदा लेंथी है।
2: हाँ जी,
3: इसका हम टोटल बच्चा ही लेने मतलब फिंगर साइज बच्चा लेने
2: को। अच्छा, एक पीस का क्या हिसाब
3: होता है? उसका पीस का साइज गवर्नमेंट का रेट है वो 4 रुपये है लेकिन प्राइवेट फार्म अपनी अपनी मर्जी नहीं बेचते।
2: हाँ, 1-2 रुपये महंगा लगा।
3: हाँ, कुछ कोई 4 बेचता कोई 5 बेचता है चार लेंदे कभी पांच लेंदे।

0: मछली पालन दे जड़े अनुभव हैं तो हाँ हाँ करने साझा किए तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान साथियों तो तुहां सुनिए जानकारी और जानकारियां तो जरूर असन जो कुछ ना कुछ सीखने जो मिलता है और जरूर तुहां भी जरूर सीखे होना है ना जी।
2: जी बिल्कुल जी, कन्नै दिखा जानकारी बड़ी अच्छी थी, कन्नै
1: बिल्कुल
2: अहां दे किसान साथी कि मछली पालन जेड़ा से करी सकदे ने,
1: जी
2: कन्नै जल्लू एक किसान भाई आपू अहां दे किसान भाई दसदा ना तो ज्यादा चीजां समझ आउंदी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: है ना
1: हाँ
2: जी।
1: कोई भी काम कर देन तो जरूर पूछ देन कि तू हाँ एक काम किए शुरू किते सांझो भी दसा और बोल देना कि एक दूजे दसी के या पूछी के कल जालू काम किता जानदा से काम जरूर सिरे चढ़दा है।
2: कन्नै अहां दे जेड़ा से टियाले दे जेहड़े सेवक हैं जियां अहां
1: जी
2: दे किसान मित्र हो रहे हैं,
1: जी जी
2: देखा कदों कितनी कितनी दूर पुजी जाते हैं किसान भाइयों ने गलबात करना है
1: बिल्कुल जी
2: ना जी।
1: बिल्कुल
2: कन्नै किसान भाई जरूर जरा सा इन्हें कुछ सीखते होने, कन्नै
1: जी
2: उन जरा सा इस समय होया फिर एक लोक गीत
1: लोग
2: दा।
1: गीत जी।

0: जोधा राम जी दिखा घड़ी चढ़ी से सांझो इशारा करा कर दी है कि
1: जी
0: हुण उठने दा समय हुई है, कने यहाँ चली पौंदे न घरां जो।
1: हाँ जी
0: कने जाने ते पहले 10 दिन कि आज तकनीकी सहयोग रहा सुनील शर्मा दा और कार्यक्रम प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
1: जी
0: हुण आहां दोनों जो दिया अनुमति।
1: अच्छा
0: अच्छा
1: जी,
0: जी, जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने केंद्र से उठाया कैन खाद संकट का मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब बागवानों को जल्द राहत पहुंचाने का किया आग्रह। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रात 12 बजे मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सड़कों की सुरक्षा व रखरखाव के लिए विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक से आम लोगों को मिलेगी सुविधा।

0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार कैग रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, वित्तीय कुप्रबंधन की खुली पोल और चंबा जिला में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू। पहले दिन आज सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कैन उर्वरक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें सेब उत्पादकों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। रोहित ठाकुर ने बताया कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन उर्वरक उपलब्ध न होने से सेब उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग से हर वर्ष करीब 6000 करोड़ रुपए का योगदान होता है और सेब बागीचों के लिए कैन उर्वरक एक भरोसेमंद और किफायती स्रोत है। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से उर्वरक निर्माताओं को कैन के उत्पादन और इसकी उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भजन कीर्तनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। शिमला के गंज बाजार में श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर शीश नवाया। श्री सनातन धर्म सभा शिमला के प्रचार मंत्री सुमन पाल दत्ता ने बताया कि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान लोग कान्हा के भजनों पर झूम उठे।
1: पूरे शहर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। 3-4-5 दिन मंदिर में सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हमने हुशियारपुर से, यमुनानगर से और बिलासपुर से बहुत सारी जगह से सब महात्मा बुलाए हैं। लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे

0: उधर सोलन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। सोलन के श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कार्यक्रमों में भाग लिया। आज रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।
1: इस दिन सभी लोग बड़े धूमधाम से उल्लास से व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, नृत्य करते हैं।
2: आज हमारे हरि मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रात को 12 बजे उनका जन्म होगा, उसके बाद भोग प्रसाद और सारा भाव बहुत है ठाकुर जी के लिए। हमें राधा रानी की पूरी कृपा है।
3: वैसे रोज इस मंदिर आते हैं पर आज कुछ अलग ही उल्लास है हमें यहाँ पे आने का। इसी तरह सभी देशवासी खुश रहे व ठाकुर जी का जन्मदिन मनाए।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित विधान हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 सड़क सुरक्षा व रखरखाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क अवसंरचना की तत्काल बहाली का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मुरम्मत का खर्च और जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सड़क किनारे निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट में राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन बेनकाब हुआ है और इस रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है। आज शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राजस्व व राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार ने बिना बजट के ही 438 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टेंडरिंग और टैक्स वसूली सहित अन्य कई क्षेत्रों में राज्य सरकार की नाकामी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर कदम से कुछ गिने चुने लोगों को लाभ हो रहा है जबकि प्रदेश लगातार नुकसान में जा रहा है।

0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ शुरू हो गई है। पहले दिन आज हजारों श्रद्धालुओं ने 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। मणिमहेश पहुंचने के लिए यात्रियों को 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा, जबकि कई श्रद्धालु हेलीटैक्सी के माध्यम से भी मणिमहेश पहुंचे। मणिमहेश यात्रा 29 सितंबर को राधाष्टमी के दिन सम्पन्न होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर वर्ष मणिमहेश पहुंचते हैं। कई मन्नत पूरी होने पर तो कई मन्नत लेकर इस कठिन सफर को तय करते हैं। 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जब श्रद्धालु समुद्र तल से 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील तक पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने पर एक अलग सी अनुभूति होती है। रास्ते में जय भोले का जय जयकार करते हुए भगत जन अपनी इस यात्रा को संपन्न कर वापस अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा व अनुसंधान संस्थान का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने यह मामला जेपी नड्डा के साथ प्रमुखता से उठाया था। अनुराग ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य व दवा आपूर्ति श्रृंखला में हिमाचल की भूमिका अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 650 से अधिक फॉर्मुलेशन इकाइयां कार्यरत हैं और इनका वार्षिक कारोबार 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। एनसीसी की छात्राओं का एक दल इन दिनों किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला की ट्रैकिंग अभियान पर है। इस दल ने 24 अगस्त को किन्नौर जिला के काफनू से अपना ट्रैकिंग अभियान शुरू किया और 10 दिनों में 60 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर ये लड़कियां स्पीति उपमंडल के मुध गांव पहुंची। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन ने पिनभावा दर्रा पार कर अभियान के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 24 अगस्त को किन्नौर के कफनू से शुरू हुआ यह दल 10 दिनों में करीब 60 किलोमीटर कठिन सफर तय कर स्पीति के मुद गांव पहुंचा। करीब 7,710 फीट की ऊंचाई से शुरू हुआ अभियान मालिंग, कारा, पुष्टिरांग और बालतार होते हुए 16,125 फीट ऊंचे पिनभावा दर्रे तक पहुंचा। ग्लेशियर, पथरीले रास्तों, नदी पार करने और खड़ी चढ़ाइयों के बीच कैडेट्स ने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्य के साथ कैडेट्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने और नशे से दूर रखने के उद्देश्य से नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में सिरमौर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 500 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है। धाटीधार क्रिकेट क्लब के सचिव मोहित ठाकुर ने आज नाहन में बताया कि ये क्रिकेट लीग 8 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।
5: युवा बिल्कुल मैदान में नहीं दिख रहे, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? नशा। नशा इस समय इतने चरम पर है, कैसे नशे से दूर रहा जाए, कैसे नशे को हम खत्म कर सकते हैं, हर तरह से प्रयास हो रहे हैं। उसी प्रकार हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को नशे से दूर रख सके। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को खींच लाता है मैदान की तरफ, ये हमारा एक मोटिव है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने केंद्र से उठाया कैन खाद संकट का मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब बागवानों को जल्द राहत पहुंचाने का किया आग्रह। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रात 12 बजे मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सड़कों की सुरक्षा व रखरखाव के लिए विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक से आम लोगों को मिलेगी सुविधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार कैग रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। वित्तीय कुप्रबंधन की खुली पोल और

0: चंबा जिला में प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू। पहले दिन आज सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर जिला सोलन से प्राप्त सूचना के अनुसार धर्मपुर के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 4 पद तथा सहायिकाओं के 11 पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों हेतु साक्षात्कार 17 सितंबर 2026 को बाल विकास परियोजना धर्मपुर के कार्यालय में प्रातः 10:30 पर आयोजित किए जाएंगे। इन पदों हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य हैं। प्रार्थी की आयु 11 सितंबर 2026 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि होनी अनिवार्य है। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रार्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10:2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। उम्मीदवार का हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है मिले जुले गीतों के कार्यक्रम सबरस का। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई हुई इस खूबसूरत गजल के साथ।

रहे हैं इस समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अब रूप जौहरी और कुणाल गांजावाला का गाया हुआ ये गीत।

और श्रोताओ, कार्यक्रम सबरस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भक्ति रचना।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान

0: और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय

0: ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
5: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना

0: जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोड़ी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today

जी श्रद्धा, चरस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे, और उसके साथ ही सह भूमिकाओं में अजीत, अरुणा ईरानी, अमजद खान, असरानी, सुजीत कुमार, केष्टो मुखर्जी और टॉम ऑल्टर हैं। और इस फिल्म के सभी गीत लिखे आनंद बख्शी ने, और उन गीतों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, चरस फिल्म साल 1976 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसी फिल्म के साथ फिल्म अभिनेता टॉम ऑल्टर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और सबसे खास बात यह है कि ये फिल्म रिलीज़ हुई 24 मई सन 1976 को, जो कि सोमवार था, जबकि बॉलीवुड में ज़्यादातर फिल्में शुक्रवार को रिलीज़ होती हैं। और जयपुर के प्रसिद्ध राजमंदिर सिनेमा हॉल में सबसे पहले इसी फिल्म को दिखाया गया था और ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके माल्टा देश में शूट होने का खुलकर प्रचार किया गया था। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान यूनिट में मुंबई से सिर्फ 6 लोग गए थे।

एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं जी सुनिए कारवां सुरों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कुमार सानू के गाए हुए इस गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म दलाल से।

मोहरा फिल्म में लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और पंकज उदास को। वो लिखे हैं इंदिवर ने और धुन बनाई है विजू शाह ने।

कारवां सुरों का ये कार्यक्रम इस समय प्रसारित किया जा रहा है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के और गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ। ये गीत हमने लिया है फिल्म वंश से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में दीजिए सुनिए जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने, वो लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कारवां सुरों का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीर फिल्म की स्टूमरी के साथ, जिसमें आवाजें हैं रेखा भारद्वाज और शारी

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल, विशाल और शेखर रविचानी ने।

मीत ब्रदर्स की आवाज़ों में अभी आपने सुना ड्रीम गर्ल फिल्म से ये गीत। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो और इस गीत को गाया है पलक मुच्छल ने।

बॉलीवुड बीट्स ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म पद्मावत से। इस गीत को लिखा है एम तुराज ने, धुन बनाई है संजय लीला भंसाली ने और इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और श्वारूप खान ने।

और श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली को। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत है, संगीतकार हैं ए आर रहमान और फिल्म का नाम है लगान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए हुए इस गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म दीवाना से।

0: मुझे।
1: चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद का गाया हुआ फिल्म सुजाता से।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: चित्रपट संगीत इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म यहूदी से, और इस गीत में आवाज है मुकेश की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है बसंत बहार।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मधुमती फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

0: चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है।

नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।